नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रुसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित

0: शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नई दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The 18th BRICS Summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. World leaders including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Saudi Arabia's Minister of Foreign Affairs Prince Faisal bin Farhan Al Saud will also participate in the summit. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung are the other heads of state who will attend the summit. United Nations Secretary General Antonio Guterres, Director General of WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, and President of New Development Bank Dilma Rousseff are among the heads of international organizations who will participate in the event. Prime Minister Narendra Modi is likely to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin today. The President of Russia and Foreign Minister of Brazil arrived in the national capital last night to participate in the summit. The President of South Africa is set to arrive this morning. Presidents of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi and Prime Ministers of Malaysia and Ethiopia are scheduled to arrive later today. Prime Minister Narendra Modi will have a series of bilateral meetings on the sidelines of the summit.

0: हमारे जीवन में क्रोध और आंधी एक समान है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें अपने नुकसान का पता चलता है। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। सरबजीत, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड वंस अगेन अ वेरी वार्म एंड लविंग वेलकम टू ऑल आवर ग्रेट लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड मुकेश, सिंस यू स्टार्टेड द शो बाय स्पीकिंग अबाउट द सिमिलैरिटी बिटवीन Andhi and anger, if I may say so. So I'd like to add here that anger is a fire within us. The question is not whether we feel it, but whether we let it destroy us or use this anger to create change.
0: Bilkul.
1: So with this amount of positivity and thought process, let's begin the program Aaj Savere right away.
0: जी हाँ, तो नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकन हिस्सा लेंगे। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली तथा सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे।
1: And adding to the details further, the BRICS Business Forum 2026 will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. The day-long event brings together over 1,000 corporate executives, trade ministers, financial leaders, global investors and industry innovators from member nations. It is being organized by the BRICS

0: Business Council in partnership with leading APEX chambers, FICCI, CII and ASSOCHEM. This flagship international B2B economic summit serves as the official commercial precursor to the 18th BRICS Leaders Summit. Prime Minister Narendra Modi is likely to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin today. The President of Russia and Foreign Minister of Brazil arrived in the national capital last night to participate in the summit. The President of South Africa is set to arrive this morning. Presidents of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi and Prime Ministers of Malaysia and Ethiopia are scheduled to arrive later today. Prime Minister Narendra Modi will have a series of bilateral meetings on the sidelines of the summit. Our correspondent brings us more details.
1: BRICS has come a long way from a four-nation grouping to a significantly expanded platform with a wider global footprint. The journey began in 2006 when the BRIC grouping was formalized during a meeting of foreign ministers on the sidelines of the UN General Assembly in New York. The first BRIC summit was held in Yekaterinburg, Russia in June 2009. In 2010, the grouping welcomed South Africa, becoming BRICS. South Africa took part in its first BRIC summit in Sanya, China in April 2011. In January 2012, BRICS entered a new phase of expansion with Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and the UAE becoming full members. India assumed the BRICS chairship on the 1st of January this year, taking the lead for the fourth time. India had previously chaired BRICS in 2012, 2016 and 2021. A journey of expansion, a wider global voice and now India at the helm once again. Shagun Chopra for Aaj Savere.
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कल डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। मंत्रालय ने बताया कि यह कार्यक्रम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और इसके लिए 100% केंद्रीय धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
0: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said that under the proposed new Seed Act, farmers' rights are fully protected with no restrictions on traditional and farmers' seed varieties. He said this while chairing a consultation with leaders of farmer organizations on the proposed new Seed Act from across the country in New Delhi yesterday. Mr. Chauhan said that the existing Seed Act was enacted in 1966 and the Seeds Control Order came into force in 1983. He added that the framework is no longer adequate to address emerging challenges such as fake and substandard seeds and gaps in fixing responsibility.
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट के आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी।
0: TRAI has released the standards of quality of service, duration of advertisements in television channels, repealing regulations 2026 yesterday. These repeal the standards of quality of service, duration of advertisements in television channels regulations 2012, dated 14th May 2012, which prescribed a ceiling of 12 minutes of advertisements in a clock hour in broadcast of a program. These regulations were primarily intended to monitor and enforce the advertisement duration ceiling.
2: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार कर 20 लाख पेशेवरों को तैयार करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कल जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में कहा कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था में किए जा रहे सुधारों से फिल्म निर्माताओं को पायरेसी से बचाने में भी सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस उद्देश्य को आगे बढ़ाता है जिसमें उन्होंने वर्ष 2019 में फिल्म निर्माताओं से कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग और निर्माण का आह्वान किया था। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव चंचल कुमार ने जम्मू कश्मीर सरकार को फिल्म निर्माताओं और सिनेमा से जुड़े पेशेवरों को एक मंच पर लाने के लिए शुभकामनाएं दी।
0: And now let's take a peep in the world of sports. In cricket, India produced a brilliant all-round performance to thrash Bangladesh by 40 runs in the first semi-final of the Women's Asia Cup 2026 in Dubai last night. India's victory secured their place in the Women's Asia

0: की बात आकाशवाणी की साथ की अगली कड़ी में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला से बातचीत प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम में बच्चों के साथ पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण पर उनके कार्यों पर चर्चा होगी। ये बातचीत आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। इसे News on AIR मोबाइल ऐप और News on AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले सरबजीत आप बताएं चेन्नई के क्या समाचार हैं आपके पास।
1: जी मुकेश, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय लेफ्ट फॉर हिज फर्स्ट फॉरेन विजिट टू द यूनाइटेड किंगडम आफ्टर बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ही इज एक्सपेक्टेड टू स्टे इन लंडन फॉर अ फ्यू डेज एंड होल्ड मीटिंग्स टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। Top officials of the Industries Department and the Finance Department will have back-to-back discussions and sign a lot of MOUs. And what's the update that Mukesh you are sharing with us?
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के समाचारों की। रेलवे ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कोल्हापुर के छत्रपति शाहूजी महाराज टर्मिनस के बीच 4 अतिरिक्त गणपति स्पेशल गाड़ियां चलाने की घोषणा की है। ये रेलगाड़ियां 12 और 14 सितंबर को दोपहर 2:30 मुंबई से प्रस्थान करेंगे और अगले दिन सवेरे 4:20 पर कोल्हापुर पहुंचेंगी। वापसी में रेलगाड़ियां 12 और 14 सितंबर को रात 12:05 पर कोल्हापुर से प्रस्थान करेंगे और उसी दिन दोपहर 1:30 ये मुंबई पहुंचेंगी। पश्चिमी रेलवे ने भी दीपावली के दौरान विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। बृहन मुंबई महानगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने कल गणेश उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। गणेश उत्सव 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। उन्होंने शहर में कई प्राकृतिक विसर्जन स्थलों और कृत्रिम तालाबों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि विसर्जन जुलूसों को सुचारू रूप से संचालित करें और पर्याप्त नागरिक सुविधाएं प्रदान करें। और बृहन मुंबई महानगर पालिका ने शहर के 7 जलाशयों की संयुक्त क्षमता लगभग 96% तक भर जाने के बावजूद 10% पानी की कटौती जारी रखने का फैसला किया है। सितंबर में वर्षा की अनिश्चितता और आने वाले महीनों के लिए पानी बचाने की आवश्यकता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।
1: So these were all eco-friendly news stories, Mukesh. So adding to this bucket, I too have an update from Bengaluru. The Bengaluru East City Corporation has put in place measures for an eco-friendly Ganeshotsav, banning Ganesh idols made of plaster of Paris, thermocol and chemical colours. Commissioner D.S. Ramesh said a single window system with ward-wise nodal officers has been established to expedite permissions for installing idols, with applications to be processed within 24 hours in coordination with the police, BESCOM and fire and emergency services. Temporary immersion ponds and mobile tanks will be provided to prevent pollution of lakes and water bodies. So Mukesh, indeed, you know, these kind of initiatives are highly applaudable.
0: Bilkul.
1: This talks about festivity with conservation of environment.
0: Jee.
1: So moving on further, what update do you have for us?
0: कोलकाता की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने कल एक संशोधन विधेयक पारित किया। इसके अंतर्गत पहली बार विश्वविद्यालय कर्मचारियों के एक संस्थान से दूसरे संस्थान में तबादलों के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर विश्वविद्यालय कर्मचारियों का तबादला कर सकते हैं। तबादला किए गए कर्मचारियों के पास अपने मूल विश्वविद्यालय में स्थायी नियुक्ति बनाए रखने या नए विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से शामिल होने का भी विकल्प होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधेयक के बारे में कहा कि सरकार का उद्देश्य नए कर्म और कम कर्मचारियों वाले विश्वविद्यालयों में अनुभवी शिक्षकों और कर्मचारियों की तैनाती करके उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। विधानसभा में विधेयक के पक्ष में 171 वोट और विपक्ष में 15 वोट पड़ने के बाद इसे पारित कर दिया गया।
1: So, though Mukesh, we've already spoken about the news from Chennai, but I'm taking the liberty to come back to it because there's a very interesting piece of news here that, you know, dahi or yogurt is a part of our staple daily Indian diet. And Milky Mist Dairy Food has commissioned a new Skyr and Greek yogurt manufacturing facility at its integrated plant in Perundurai with an investment of around 40 crore rupees. The facility, equipped with ultra-filtration technology, has a processing capacity of up to 150 tons a day, significantly higher than the company's earlier capacity capacity of around 20 tons.

0: a day, commissioned in 2022. The company was the first in India to introduce ultrafiltration technology for manufacturing Skyr and Greek yogurt way back in 2022. And let's move on to the news from Hyderabad. The three-day nomination jury process for the 14th CMS Vatavaran International Environment and Wildlife Film Festival concluded yesterday at the Instructional Media Center of Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad. Held from 8 to 10 September in partnership with IMC, the evaluation process finalized 58 nominated films out of over 900 entries received from 82 countries. The event was inaugurated by MANUU Vice Chancellor Professor Saeed Anul Hassan alongside Dr. Vasant Rao, Director General of the Center of Media Studies, and IMC Director Mr. Rizwan Ahmed. And Mukesh, I am eagerly waiting to hear from you. What's the update from Delhi now?
1: बिल्कुल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल से, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोक रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय तथा अमृत उद्यान 11 से 13 सितंबर तक आम जनता के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि कल राष्ट्रपति भवन प्रांगण में गार्ड परिवर्तन समारोह भी आयोजित नहीं होगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय के युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने कल विधानसभा का दौरा किया। इनमें किरोड़ीमल कॉलेज, सुखदेव कॉलेज, लॉ सेंटर 1 और 2 तथा शहीद भगत सिंह कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थियों को लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों, सार्वजनिक जीवन तथा युवाओं की जिम्मेदारियों से जुड़े विषयों पर विधानसभा अध्यक्ष से संवाद का अवसर मिला। दिल्ली सरकार राज्य आपदा मोचन बल SDRF का गठन करेगी। इससे आपदा की स्थिति में प्रशिक्षित और विशेषज्ञ बल को घटना स्थल पर शीघ्र पहुंचने, राहत तथा बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा जान माल के नुकसान को कम करने में सहायता मिलेगी। और दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कल भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी SCL दास को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। और दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने ₹2,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और सरबजीत कौर के साथ। और आज सवेरे में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का, तो सबसे पहले दिल्ली का मौसम बताएं।
0: जी,
1: तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा भी हो सकती है और आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता का रुख करें तो कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और मुंबई की बात करें तो वहां भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
0: Well, Mukesh, Chennai will have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperatures will be around 28 degrees Celsius, while the maximum is expected to go up to 36 degrees Celsius. Bengaluru will have generally cloudy sky with light rain again. Minimum temperature around 22 degrees Celsius, maximum up to 31 degrees Celsius. Hyderabad will also have partly cloudy sky with possibility of rain, thunderstorm or dust storm. The minimum temperature will be around 25 degrees Celsius. Maximum may go up to 33 degrees Celsius.
1: और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 11 सितंबर है, तो आज ही के दिन सबसे पहली घटना क्या हुई थी?
0: Well, Mukesh, before we start, you know, with the list of events that happened on this day

0: when we flip the pages of history, today is Van Shaheed Divas. Let us, you know, share this also piece of information with our listeners that All India Forest Officers Federation, AIFOF, is scheduled to observe Van Shaheed Divas on this day to remember the sacrifices of the forest workers who laid down their lives to protect the forest. This day is chosen to commemorate the Khejralli massacre of the year 1730, where 360 Bishnois were killed for protecting trees. And now let's talk about the last, almost the second last segment rather, of this program, that is, which we called This Day in History. And Mukesh, 11th September, from a breakthrough in communication to a message of universal brotherhood, and later one of the darkest days in modern history, September 11 indeed has witnessed moments that changed the world. 1853, on this day, a pioneering electric telegraph line was established in San Francisco, connecting the Merchants Exchange with Point Lobos, marking an important step in the evolution of long-distance communication.
1: और तकनीकी प्रगति से अब रुख करते हैं उस ऐतिहासिक क्षण का जब भारत का आध्यात्मिक संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं वर्ष 1893 की, जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से शुरू हुए उनके संबोधन ने धार्मिक सद्भाव और विश्व बंधुत्व का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया।
2: सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects.
0: 13 years later, another important chapter in India's history of non-violent resistance began overseas. Yes, 11 September 1906, Mahatma Gandhi led a historic mass meeting in Johannesburg, where the Indian community resolved to peacefully resist the discriminatory Asiatic Registration Ordinance. This movement became the foundation of the Satyagraha movement. And 1973, on this day, a military coup overthrew President Salvador Allende, marking the beginning of Augusto Pinochet's rule.
1: और राजनीतिक घटनाओं से अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल और सहयोग की दुनिया की ओर, और बात करते हैं वर्ष 1998 की। आज ही के दिन इस वर्ष 16वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन कुआलालंपुर में हुआ था, और ये एशिया में आयोजित होने वाले पहले राष्ट्रमंडल खेल थे। लेकिन 21वीं सदी में 11 सितंबर की पहचान एक बेहद दुखद और भयावह घटना से जुड़ गई। जी हाँ, 2001 में अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। चार अपहृत विमानों के जरिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन को निशाना बनाया गया, जबकि एक विमान पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
0: 2024, on this day, the National Fisheries Digital Platform, NFDP, was launched on September 11 by the Department of Fisheries under the Pradhan Mantri Matsya Kisan Samriddhi Saha Yojana.
1: और अब हम याद कर रहे हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं महाकवि महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा केवल एक नाम नहीं, हिंदी साहित्य की वो रोशनी थी जिसने अपनी कविताओं में असंख्य दिलों को छुआ, जिन्हें प्यार से आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी कविताओं में प्रेम, पीड़ा और आध्यात्मिकता की वही गहराई झलकती है जो मीरा की भक्ति में थी। 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी का बचपन साहित्य और संस्कारों की छाँव में बीता। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा एक प्रगतिशील विचारधारा के थे, तो माँ हेमरानी देवी धार्मिक थी और संस्कृत तथा हिंदी की विदुषी थी। यही कारण था कि महादेवी के मन में बचपन से ही शब्दों की महक बस गई। इंदौर के मिशन स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत करने वाले उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला सीखी, लेकिन उनके दिल को जो सबसे ज्यादा भाया वो था साहित्य का संसार। माँ ने उनकी इस रुचि को हमेशा प्रोत्साहित किया और यही सहारा आगे चलकर उन्हें साहित्य की बुलंदियों तक ले गया। और उनकी कविता की कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। चिर सजग आंखें उन्हीं दी,

0: आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कम हो ले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज भी आलोक के डोरे तिमिर की घोर छाया जागकर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना।
1: And Mukesh, I'd like to add here that the great Mahadevi Varma was, you know, also known as the Saraswati in the vast temple of Hindi literature, and she was also trained in music. Her compositions are noted for their expressive language and stylistic refinement.
0: और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि गजानन माधव मुक्तिबोध को। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य की स्वातंत्र्योत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्ष व्यक्तित्व थे। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी थे और समीक्षक भी। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है और उनकी एक कविता, मैं उनका ही होता जिनसे मैंने रूप भाव पाए हैं, वे मेरे ही ये बंधे हैं जो मर्यादाएं लाए हैं, मेरे शब्द भाव उनके हैं, मेरे पैर और पथ मेरा, मेरे अंत और अथ मेरा, किंतु ऐसे चाव उनके हैं, मैं ऊंचा होता चलता हूं उनके ओछेपन से गिर गिर, उनके छिछलेपन से खुद खुद मैं गहरा होता चलता हूं।
1: Well, the next personality in our list is Subramaniam Bharti, the celebrated Tamil poet, journalist and independence activist. Known for patriotic poetry, Subramaniam Bharti was also known as a social reformer, women's emancipation champion, and he vociferously opposed to caste discrimination.
0: जी हाँ, इन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। सुब्रमण्य भारती एक जुझारू शिक्षक, देशप्रेमी और महान कवि थे और आपकी देशप्रेम की कविताएं इतनी श्रेष्ठ हैं कि आपको भारती उपनाम से ही पुकारा जाने लगा। तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्य भारती ऐसे साहित्यकार थे जो सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे, जबकि उनके रचनाओं से प्रेरित होकर दक्षिण भारत में आम लोग आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। ये ऐसे महान कवियों में से थे एक थे जिनकी पकड़ हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं पर थी, पर तमिल उनके लिए सबसे प्रिय और मीठी भाषा थी। उनका गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर समान अधिकार था।
1: The great Subramaniam Bharti advocated Indian independence, equality, women's education and social justice.
0: और अब हम याद कर रहे हैं आचार्य विनोबा भावे को। आज उनकी जयंती है। 11 सितंबर को महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के गागोदा गांव के एक धर्मपरायण चित्र पावन ब्राह्मण परिवार में विनोबा भावे का जन्म हुआ। भूदान आंदोलन के माध्यम से आचार्य विनोबा भावे ने देश के वंचित भूमिहीन वर्ग को उनके अधिकार दिलाए। समानता की एक ऐसी संकल्पना रची जिसमें भूमिपतियों के निर्धन जन की चिंता की और उनके हित में अपनी भूमिका दान किया। अपने संकल्प के लिए वे हजारों मील पैदल चले। सर्दी में, गर्मियों में, वर्षा में, धूप में सेवा के बल पर उन्होंने करोड़ों लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाया। उनकी प्रेरणा से लाखों एकड़ भूमिहीन को दान दी गई।
1: In fact, Mukesh, the great Vinoba Bhave was a close follower of Mahatma Gandhi and he became an important leader of the Sarvodaya movement. Vinoba Bhave promoted Gramdan, village level voluntary sharing of land and resources, and it's important to mention here that he was the first individual recipient of the Bharat Ratna and he received it posthumously in the year 1983.
0: Aur aaj hi Bharat ke mahan aur khyati prapt cricketer नानक अमरनाथ भारद्वाज की जयंती है। उन्हें हम लाला अमरनाथ के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक लगाने का गौरव इन्हें ही प्राप्त है।
1: We are also remembering today the great Karaikudi Mani, a renowned Indian mridangam player and one of the most influential percussionists in Carnatic music.

0: आज जो सांस्कृतिक गतिविधियां होने वाली हैं उनके बारे में श्रोताओं को बता दें तो आज नई दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में दोपहर 2 बजे, शाम 4:30 बजे और शाम 7:30 बजे से फेलिसिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जैनत डांस ग्रुप की ब्रॉडवे शैली का थिएटर प्रोडक्शन कृष्ण कथा प्रस्तुत की जाएगी। आज ही नई दिल्ली के LTG ऑडिटोरियम में शाम 7 बजे से ब्लैंक कैनवास में ध्रुपद इंडिया फाउंडेशन की स्वर्णापर्ण संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा और नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में शाम 7 बजे से द थिएटर में सोसाइटी फॉर एक्शन थ्रू म्यूजिक की ओर से भारतीय शास्त्रीय संगीत की शाम आयोजित की जाएगी और नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में ही शाम 7 बजे से स्टीन ऑडिटोरियम में अनीता गुहा की शिष्या प्रियंका रघुरामन पुनरागम नामा की एक भरतनाट्यम की प्रस्तुति होगी। तो घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए तो मुकेश कुमार और सरबजीत कौर को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत।
1: थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड होप यू एंजॉयड टुडेज आज सवेरे। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।

0: नमस्कार, समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, CII और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉ APJ अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के 3रे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
1: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
1: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: 4 दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, SEBI के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी ने एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses,

0: countries and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनमथिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनमथिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा, बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्य लिखता है प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में

0: முத்திரை கானத்தில் தொடர்ந்து பாடல்கள் கேட்கும் முன்,
1: எவ்ரி கிரேட் ஜேர்னி பிகின்ஸ் வித் பீப்புள் கம்மிங் டுகெதர் டு லிசன், டு லேர்ன், டு இமேஜின் வாட்ஸ் பாசிபிள். திஸ் இஸ் த பிரிக்ஸ் 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Namaskar, main hu Kailash Kher aur Akashvani ke sabhi shrotaon ko mera barambar pranam aur Bharat ki sena ko samarpit ye mera geet भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார். अट्ठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के इस सम्मेलन की तैयारियां अंतिम रूप में हैं। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।
2: पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन के इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य सेवाएं बहाल रहेंगी। ब्रिक्स व्यापार मंच का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। इस एक दिन के कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। एक बयान में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद यह बयान आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग की निदेशक जूली कोजेक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका मुख्य कारण सेवाएं और निर्यात में हुई वृद्धि है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 की जून की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में कल हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत की 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन

0: Right. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के उच्चतम स्तर 108.77 अमरीकी डॉलर पहुंची। अमरीकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष जू जियासी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राष्ट्रपति पुतिन का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वहीं ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्वकर्ता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, CII और एसोचैम के सहयोग से हो रहा है। इस सम्मेलन के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और जानकारी के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता के पास।
3: 4 दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, SEBI के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी ने एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक और प्रमुख आधार बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि

0: के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज चार महीने के उच्चतम स्तर 108.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है। ये 107.75 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। पिछले एक सप्ताह में ब्रेंट क्रूड की कीमत में 12% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष की अवधि और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें कितने समय तक बनी रहती हैं, ये भारत की आर्थिक स्थिति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
1: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: और इस समय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स व्यापार मंच को भारत मंडपम में संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: मटेरियल्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स आवर सप्लाई चेन्स विल बी रेजिलिएंट व्हेन दे रन बोथ वेज विद नॉन टैरिफ मेजर्स imposing higher export costs, in fact much more than the tariffs themselves, for 88% of the countries, we need to make market access easier, smoother. I urge BRICS member states and partner countries to open their markets while working together to simplify regulatory procedures and facilitate faster clearance of consignments.
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भागीदार देशों का वो स्वागत करते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत मलेशिया की रॉयल मलेशिया नेवी के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्षण में शामिल होगा। भारतीय नौसेना ने बताया कि इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र में पेशेवर गतिविधियां शामिल होंगी, जिनका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल और संचालन सहयोग को बेहतर बनाना है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में एक अमरीकी मानव रहित पनडुब्बी को निशाना बनाया है। उसने अमरीका की इस कार्रवाई को आक्रामक बताया। IRGC ने कहा है कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर अमरीकी सेना की मानव रहित पनडुब्बी सेलड्रोन को जब्त कर लिया है। उसने ये भी दोहराया कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद है और ईरान के नियंत्रण में है, और उन्होंने चेतावनी दी है कि जलमार्ग में किसी भी शत्रुतापूर्ण उपस्थिति को निशाना बनाया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स फाइनल में आरना सबलेंका का सामना एलिना रिबिकिना से होगा। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सबलेंका ने जेसिका पेगुला को और एलिना ने कोको गॉफ को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच कच्चे तेल की कीमत चार महीने के उच्चतम स्तर 108.77 अमरीकी डॉलर पहुंची। अमरीकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ही अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: இனிய பாடல்களோடு உலா வந்தது சுகமான ராகங்கள். மீண்டும் சுகமான ராகங்கள் நாளை காலை 10:30 ஒலிபரப்பாகும். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास लगातार जारी हैं।
2: This year is a milestone.
3: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के

0: 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
1: एक दिवसीय कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधिकर्ता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, सीआईआई और एसओचैम के सहयोग से हो रहा है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। एक रिपोर्ट।
2: पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति यावेरी मुसेवेनी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडोमेगवो ओजुकवो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। विद्युत तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल 14 से 16 सितंबर तक अमेरिका के ह्यूस्टन में होने वाली G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। अमेरिका की G20 अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में G20 देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, किफायती ऊर्जा, अवसंरचना के लिए विकास और मजबूत ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin in New Delhi this afternoon. The two leaders are expected to discuss a range of issues of mutual interest. The Russia-Ukraine conflict, the situation in West Asia, trade relations and energy cooperation are expected to come up for discussions between the two leaders. President Vladimir Putin arrived in the national capital in the early hours today to attend the BRICS summit.

0: மீண்டும் மெலிசை பாடல்களை நாளை மதியம் 12:40 கேட்கலாம். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवो ओजोखो और उरुग्वे के विदेश

0: मंत्री मारियो लुबित्किन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांदुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज सुबह ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
1: For BRICS particularly, higher economic activity.
2: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
0: है। इस अवसर पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
3: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
0: प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित लोन के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 74,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said leaders from around the world are gathering in New Delhi for the 18th BRICS summit beginning tomorrow. In a social media post today, Mr. Modi expressed confidence that the conference will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as the guiding objective. The two-day summit, which will be held at Bharat Mandapam, will bring together 11 major emerging and developing economies. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, among others, will participate in the summit. Ahead of the BRICS summit, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin in New Delhi this afternoon. The two leaders are expected to discuss a range of issues of mutual interest. Prime Minister Modi will hold talks with Iranian President Masoud Pezeshkian this evening. The meeting assumes significance in view of the prevailing situation in West Asia. Prime Minister Modi is also scheduled to meet United Nations Secretary General Antonio Guterres during his engagements in the national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said resilience has become central to every nation's economic strategy, along with the need to foster and promote sustainability through deeper cooperation and stronger partnerships. Addressing the BRICS Business Forum in New Delhi this morning, Dr. Jayashankar said the summit is

0: department. More than 44 lakh people remain affected across 85 blocks in 14 districts. More from our correspondent.
1: Relief operations are underway in the affected districts, with 1,046 community kitchens serving food. More than 2,50,000 polythene sheets and over 41,000 of dry ration packets have been distributed. 1,942 boats are in operation, while 812 medical camps have been set up. According to the Water Resources Department, water levels in major rivers have receded over the past 24 hours. However, 8 rivers are still above the danger mark. The Ganga remains above the danger mark at several locations in Patna, Munger, Bhagalpur and Kahalgaon, while the Kosi is above mark at Baltara in Khagadia and Kursela. The Punpun River at Shripalpur in Patna is receding by around 2 centimeters every hour, bringing relief to people in low-lying areas. Nidhishri for Akashvani News, Patna.
0: In sports, in the Junior Asia Cup hockey, the Indian men's team will take on Malaysia in the semi-final at Mochi in China this afternoon. The match will begin at 2:15 p.m. Indian Standard Time. In U.S. Open tennis, defending champion Aryna Sabalenka and second seed Elena Rybakina have set up women's singles title clash. Second seed Elena Rybakina defeated fourth seeded Coco Gauff in the second semi-final in New York. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi expresses hope for positive discussions with aspiration for global welfare as world leaders gather in New Delhi for BRICS summit commencing tomorrow. Prime Minister Modi to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian today. BRICS Business Forum begins in national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for greater resilience, sustainability and cooperation amid rising global uncertainty as BRICS marks 20 years. India reiterates unwavering resolve to combat terrorism on 25th anniversary of horrific 9/11 attacks in the US. In Men's Junior Asia Cup hockey, India to take on Malaysia in semi-final at Mochi in China this afternoon. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमरीकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में अरीना सबालेंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
3: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।

0: ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेग्वू ओजुक्वू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉ. जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन से भी मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने ये बात कही।
5: For BRICS particularly, higher economic activity.
0: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
5: and transparent trade and investment.
1: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
0: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
1: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर

0: काम करने की अपील की।
1: ब्रिक्स टुडे रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 1/4।
2: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
4: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1,046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1,942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के पालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक

0: तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आरेना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आरेना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज चार महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட் அலைவரிசை. நேரம் 2:30.
3: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணியின் சென்னை FM கோல்ட் 100.1.
2: நேயர்கள் இனி கேட்கலாம் திரை கானம். கேட்கும் முன்,
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: நிகழ்ச்சியின் முதலில் கேட்கலாம் சிகப்பு ரோஜாக்கள் படத்திற்காக கமல்ஹாசன் ஜானகி பாடிய பாடல்.

0: ఆకాశవాణి చెన్నై కేంద్రం సమయం 4 గంటలు కావస్తోంది. కొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు. ఢిల్లీ నుండి ప్రసారం.
1: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है. दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी आज नई दिल्ली में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री देनिस मंतोरोव से मुलाकात की. बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग को और मजबूत तथा व्यापक बनाने के उपायों पर चर्चा की. इस बीच प्रधानमंत्री आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे. पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं. श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण होगा. एक रिपोर्ट.
2: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी. इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण. शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे. इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे. सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल.
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है. मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है. नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही. शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 2 दिन की भारत नवाचार प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं. इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है. प्रदर्शनी में भारत के 37 डीपटेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं जो ब्रिक्स सम्मेलन के विषय के अनुरूप हैं. शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये आयोजन कारोबारी संपर्क, प्रौद्योगिकी साझेदारी, निवेश संबंधी चर्चाओं, व्यापारिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच के अवसर प्रदान करेगा. ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी. इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन इसके सभी रूपों के खिलाफ भारत का संकल्प और विरोध अडिग है. अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा

0: People coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together. To listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Bharatiya Sena.
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: in the E2 grade of the management cadre. Under Part A, MRPL is conducting a special recruitment drive for SC, ST, OBC, NCL candidates for assistant engineer positions in the mechanical, electrical and chemical disciplines. Under Part B, recruitment is being conducted for assistant engineer in chemical discipline. Recruitment will be based on GATE 2026 result, which will be used for initial shortlisting of candidates for further selection process. The online application portal last date of submission is 19 September 2026. Detailed advertisement and application information is available on www.mrpl.co.in/careers. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न CPSE और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है और तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स व उभरते ऊर्जा समाधानों के क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति वाली विविध और एकीकृत ऊर्जा कंपनी है। इंडियन ऑयल अपने आगामी पॉली ब्यूटाडाइन रबर प्लांट और PBR बिजनेस मार्केटिंग ग्रुप में इन पदों पर भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करती है। उत्पादन प्रबंधक, वरिष्ठ उत्पादन प्रबंधक तथा वरिष्ठ प्रबंधक PBR मार्केटिंग। इच्छुक प्रत्याशी विज्ञापन और अन्य अपडेट के लिए देख सकते हैं 5 सितंबर 2026 से 11 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। अपर डिवीजन क्लर्क UDC एक रिक्ति तथा अकाउंटेंट लेखाकार दो रिक्तियां। विस्तृत दिशा निर्देश, विज्ञापन, पात्रता मानदंड, नियम और शर्तों तथा निर्धारित आवेदन प्रपत्र की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.rdsdeharyana.dgt.gov.in। रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का उद्यम आयुध निर्माणी देहू रोड आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। कार्यकाल आधारित ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर। इस पद के लिए यदि आप जानकारी चाहते हैं शैक्षिक योग्यता के विषय में तो ध्यान दीजिए, केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक BE, BTEC अथवा डिप्लोमा धारक होना चाहिए। केमिस्ट्री को मुख्य विषयों में से एक के तौर पर लेकर BSc स्नातक यदि हैं उम्मीदवार तो वे भी आवेदन कर सकते हैं और केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक या डिप्लोमाधारी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया की सूचनाओं के लिए आप देख सकते हैं ये वेबसाइट munitionsindia.in तथा ddpdoo.gov.in। सैनिक स्कूल बीजापुर में आवश्यकता है इन पदों को भरने की। PGT केमिस्ट्री, PGT अंग्रेजी, TGT अंग्रेजी, TGT जीव विज्ञान, TGT गणित, TGT कन्नड़, TGT भौतिक विज्ञान, TGT सामाजिक विज्ञान, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, नर्सिंग असिस्टेंट तथा सामान्य कर्मचारी MTS। शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य आवश्यक नियमों, शर्तों, आरक्षण, तैनाती के स्थान और वेतनमान आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.sssbj.in। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। वैज्ञानिक रिक्तियों की संख्या 99, वैज्ञानिक अभियंता SC रिक्तियों की संख्या 52, वैज्ञानिक अभियंता கம்ப்யூட்டர்

0: और विज्ञान, रिक्तियों की संख्या 21, वैज्ञानिक अभियंता, इलेक्ट्रॉनिकी एक रिक्ति, वैज्ञानिक अभियंता पीआरएल एक रिक्ति तथा वैज्ञानिक अभियंता इलेक्ट्रॉनिकी पीआरएल एक रिक्ति। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए देखिए कृपया इसरो की वेबसाइट www.isro.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, शाम का ये सुहाना वक्त एक बार फिर लेकर आया है देश दुनिया की खबरों, रोचक जानकारियों और दिन भर की प्रमुख हलचलों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा। अगले आधे घंटे में होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर, क्षेत्रीय संवाददाताओं से खास जानकारी, खेल जगत की प्रमुख गतिविधियां और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्मरण जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। हेलो अनुजा।
2: हेलो, नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून वैष्णवी। वैष्णवी, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन आवर सिटी ऑल डेक्ड अप फॉर द ब्रिक्स समिट टुडे। मेनी ऑफ द डिग्निटरीज हैव स्टार्टेड अराइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग टुडे एंड सेंट्रल दिल्ली हैज रिसीव्ड अ मेजर मेकओवर विद इल्यूमिनेटेड राउंड अबाउट्स, फ्लोरल डिस्प्लेज एंड ब्रिक्स थीम्ड साइनेजेस फॉर द अपकमिंग समिट। NDMC has also installed decorative lighting, LED hoardings, and undertaken extensive horticultural work across the city. Key routes linking the airport, designated hotels, and the summit venue, that is the Bharat Mandapam, are a focus for beautification and sanitation efforts. The BRICS Friendship Rose Garden in Chanakipuri has been revitalized, showcasing India's commitment to hosting the international event. And all the key leaders of BRICS members and partner countries, along with outreach invitees, are expected to take part in the discussions on strengthening cooperation and key global and regional issues for the next 2 days. The preparations are part of a wider effort to spruce up public spaces and ensure the city of Delhi is ready to receive delegates and visitors for the summit. We will certainly keep you updated on all the important developments which will take place in the next couple of days. So keep tuned to Akashwani FM Gold on 100.1 megahertz. Shall we begin with that's making news at this hour of the day, Vaishnavi?
1: Ji.
2: Prime Minister Narendra Modi expresses hope for positive discussions with aspirations for global welfare as world leaders gather in New Delhi for BRICS summit commencing tomorrow.
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी।
2: BRICS Business Forum begins in National Capital. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for greater resilience, sustainability and cooperation amid rising global uncertainty as BRICS marks 20 years.
1: अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया।
2: And in US Open tennis, defending champion Arina Sabalenka and second seed Elena Rybakina set up women's singles title clash. And moving on, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And Vaishnavi, today we will talk about 25 years of 9/11 terror attack and Digvijay Divas.
1: Anuja, 11 सितंबर की जो तारीख है, इतिहास के पन्नों में दो बिल्कुल अलग यादें समेटे हुए हैं, एक गहरी पीड़ा की और दूसरी महान गौरव की। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी

आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अमेरिका के अन्य हिस्सों में हुए इन हमलों में लगभग 3,000 निर्दोष लोगों की जान चली गई। पूरी दुनिया ने उस दिन आतंकवाद का एक ऐसा भयावह चेहरा देखा जिसने आने वाले वर्षों की वैश्विक राजनीति और सुरक्षा की दिशा बदल दी।

0: इस त्रासदी को याद करते हुए आज हम उन सभी मासूम जिंदगियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो नफरत और आतंक की आग में हमेशा के लिए खो गई। लेकिन 11 सितंबर का एक दूसरा अध्याय भारत के लिए असाधारण गर्व का है। 1893 में इसी दिन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धरती से दुनिया के सामने भारत की उस महान संस्कृति का परिचय कराया जो मानवता, सहनशीलता और भाईचारे में विश्वास करती है। शायद यही संयोग हमें एक बेहद महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है। जिस तारीख को दुनिया ने नफरत और हिंसा का भयावह चेहरा देखा, उसी तारीख ने भारत की धरती से निकले एक ऐसे संदेश को भी इतिहास में अमर होते देखा जो पूरी मानवता को एक पूरे परिवार की तरह मानता है, वसुधैव कुटुंबकम। दिग्विजय दिवस इसी भारत की उस वैश्विक विजय का प्रतीक है जिसकी पहचान किसी पर विजय पाने में नहीं बल्कि अपनी करुणा, अपनी संस्कृति और पूरी मानवता को एक परिवार मानने की सोच में है।
1: Yes, Vaishnavi, Digvijay Divas celebrates the moment when India's spiritual and cultural voice reached a global audience, offering a vision rooted not in conquest, but in dialogue, acceptance and shared humanity. And decades later, the contrast with the tragedy of 9/11 makes the message even more powerful, reminding us that humanity's greatest strength lies not in dividing people, but in bringing them together.
0: बिल्कुल, आतंकवाद ने 11 सितंबर की तारीख का अर्थ हमेशा के लिए बदल दिया। 2001 के उस सुबह लोग एक और सामान्य दिन की उम्मीद के साथ जागे थे, लेकिन दिन खत्म होने से पहले ही लगभग 3000 लोगों की जान जा चुकी थी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी।
1: Yes, on 11th of September in 2001, members of Al-Qaeda carried out coordinated attacks in the United States. 4 passenger aircraft were hijacked, 2 crashed into New York's World Trade Center. 1 struck the Pentagon and another crashed in Pennsylvania after passengers and crew attempted to regain control.
0: अमेरिका ने इसके जवाब में एक ऐसी नीति अपनाई जिसने आने वाले वर्षों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य अभियान शुरू किया, तालिबान शासन को सत्ता से हटा दिया गया और अलकायदा का नेतृत्व भी पूरी तरह कमजोर हो गया।
1: एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड, पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट थॉट बिकम्स स्पेशली मीनिंगफुल हियर। 9/11 चेंज्ड द वर्ल्ड, बट द स्टोरी दैट फॉलोड इज स्टिल बीइंग रिटन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9/11 हमलों की 25वीं बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भले ही आतंकवाद का खतरा लगातार अपना स्वरूप बदल रहा हो, लेकिन आतंकवाद के हर रूप और हर तरीके के खिलाफ भारत का संकल्प और उसका विरोध अडिग है।
1: And as a country that has faced the painful reality of cross-border terrorism for decades, India has remained at the forefront of the global fight against this scourge.
0: लेकिन 11 सितंबर को खास बनाने वाली एक और बात है अनुजा। 2001 के उस त्रासदी से ठीक 108 साल पहले 11 सितंबर 1893 को समुद्र पार अमेरिका की धरती पर भारत की एक और आवाज पहुंची थी, नफरत या हिंसा की नहीं बल्कि स्वीकार्यता, सद्भाव और सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश की।
1: In Chicago, Swami Vivekananda stood before the world's parliament of religions and began with 5 words that would become immortal. Sisters and brothers of America. The response was extraordinary. The audience rose in applause, and India's ancient spiritual philosophy found a powerful new voice on a global stage.
0: विवेकानंद सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रहे थे, वे दुनिया के सामने भारत का एक विचार

0: रहे थे, एक ऐसा विचार जिसमें सभी धर्मों और संस्कृतियों के लिए सम्मान हो और पूरी मानवता को एक परिवार के रूप में देखा जाए। उनका संदेश भारत की शाश्वत सोच वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाता था, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है।
1: मानवता के इतिहास में ऐसे उदाहरण दुर्लभ ही होंगे जहां किसी व्यक्ति के आरंभिक शब्दों ने दुनिया को इतना रोमांचित किया हो जितना शिकागो विश्व धर्म संसद में 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद के क्रांतिकारी भाषण ने किया था।
2: इट फिल्स माय हार्ट विद जॉय अनस्पीकेबल टू राइज इन रिस्पांस टू द वार्म एंड कॉर्डियल वेलकम व्हिच यू हैव गिवन अस। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन व्हिच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth.
3: दुनिया भर के नेता स्वामी जी के अनुकंपा, बंधुत्व, सहिष्णुता और स्वीकृति जैसे जीवन मूल्यों का उल्लेख करते रहे हैं। जब स्वामी जी भारत वापस आए तो तमिलनाडु में रामनाथपुरम के राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने ही स्वामी जी की शिकागो यात्रा प्रायोजित की थी।
4: And perhaps this is where the 2 September 11s leave us with a profound question. When hatred builds walls, what is it that can bring humanity together? Vivekanand had offered an answer more than a century ago. Understanding, tolerance, compassion and mutual respect.
0: 11 सितंबर हमें याद दिलाता है कि इंसानियत के सामने हमेशा एक विकल्प होता है, बंटवारे और संवाद के बीच, नफरत और सद्भाव के बीच।
4: एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेटलाइन टॉपिक व्हिच इज नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे।
0: अनुजा, क्या हो अगर हम आपको बताएं कि भारत में सदियों पहले लोग किसी राज्य या युद्ध के मैदान के लिए नहीं बल्कि एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गए थे। ये कहानी हमें राजस्थान की खेजड़ली तक ले जाती है जहां ग्रामीणों का साहस भारत के पर्यावरण इतिहास का एक असाधारण अध्याय बन गया।
4: And today on National Forest Martyrs Day, we remember not only forest officers, guards and rangers who have lost their lives protecting our forests and wildlife, but also those communities whose deep bond with nature has been part of India's civilizational ethos for centuries.
0: इस दिन की कहानी 1730 की है। जोधपुर के पास खेजड़ली में महाराजा अभय सिंह की सैनिक लकड़ी के लिए खेजड़ी के पेड़ काटने पहुंचे थे। उनके सामने एक बिश्नोई महिला खड़ी हो गई, अमृता देवी। उन्होंने एक पेड़ को गले लगा लिया और उसे काटने से रोकने के लिए अपनी जान तक देने का फैसला किया।
4: Her sacrifice inspired others to follow. By the time the protest ended, 363 Bishnois had lost their lives while trying to protect the trees. The king eventually ordered the felling to stop.
0: अमृता देवी की कही बात पीढ़ियों तक याद की जाती रही है। उन्होंने मारवाड़ी में कहा था, सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान। इसका अर्थ है, अगर किस सिर देकर भी पेड़ बच जाए तो ये सौदा सस्ता है, यानी पेड़ कटने से बेहतर है कि इंसान अपना सिर कटा दे। इन लोगों के लिए पेड़ सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं था, पेड़ जीवन का हिस्सा था, छाया का, भोजन का, आश्रय का और पूरे समुदाय के अस्तित्व का।
4: And because when a forest survives, Vaishnavi, countless lives survive with it. Mm-hmm. That is why Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav, while paying tribute today, remembered the forest officers who made the supreme sacrifice for a sustainable future.
0: उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत की जैव विविधता की रक्षा एक समर्पित कार्यबल करता है। पेड़, जंगल, वन्यजीव और नदियाँ सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वे उस जीवन समर्थन तंत्र का हिस्सा है जिस पर पूरी मानवता निर्भर है।
4: And recognizing the courage and sacrifice of forest personnel across the country, the government of India formally declared 11th of September as the National Forest Martyrs Day in the year 2013.
0: तो आइए आज उन सभी लोगों को याद करें जिन्होंने भारत के जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, और साथ ही खेजड़ली के उन 363 बिश्नोइयों को भी याद करें जिनके बलिदान ने 11 सितंबर को एक ऐसा अर्थ दिया जो किसी कैलेंडर की तारीख से कहीं आगे जाता है।
4: Because patriotism is not only about protecting the land we live in, it is also about protecting the life that makes that land worth calling home.

0: And as part of our series Prakriti Ki Baat Akashwani Ke Saath, in our upcoming episode, we speak to Dr. Archana Shukla, the recipient of the Natural Teachers Award 2026, about her work with children on environment and nature conservation.
1: मेरा जो विज्ञान पढ़ाने का जो ढंग है उसकी विधि जो है वो दूसरे शिक्षकों से विभिन्न है तो इसमें मैं अपने विद्यार्थियों को विज्ञान जो है सिर्फ किताब के माध्यम से पढ़कर या प्रश्नों के उत्तर देकर ना सिखाकर उनको उसे महसूस कराती हूँ तो जो मेरा टीचिंग मेथडोलॉजी है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है हमारा जो मिशन है वो है कि हर घर गौरैया घर होना चाहिए हमने एक और मूवमेंट शुरू किया है जिसमें हम बच्चों को पेड़ों को हग करने के लिए कहते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज हग

0: जो ढंग है, उसकी विधि जो है, वो दूसरे शिक्षकों से विभिन्न है। तो इसमें मैं अपने विद्यार्थियों को विज्ञान जो है सिर्फ किताब के माध्यम से पढ़कर या प्रश्नों के उत्तर देकर ना सिखाकर उनको उसे महसूस कराती हूँ। तो जो मेरा टीचिंग मेथडोलॉजी है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। हमारा जो मिशन है वो है कि हर घर गौरैया घर होना चाहिए। हमने एक और मूवमेंट शुरू किया है जिसमें हम बच्चों को पेड़ों को हग करने के लिए कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज हग अ ट्री मूवमेंट। मैंने एक दिन 9th क्लास में बच्चों से पूछा, पेड़ों को कैसे पहचान सकते हैं? तो एक बच्चे ने कहा कि मैम, जैसे हम अपना नाम बताते हैं, यदि वो भी अपना नाम बता दें खुद ही तो हम पहचानने लगेंगे। तो मैंने कहा इसके लिए क्या किया जाए? तो देयर वाज अ स्टूडेंट, ही सेड कि मैम QR लगा देते हैं। तो वो एक छोटे से जिले से जो काम शुरू हुआ था वो पूरे इंडिया में फैल गया और फाइनली मिशन लाइफ के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लिया और लास्ट मार्च में सभी इंडिया के स्कूल्स में इस प्रोजेक्ट को मस्ट कर दिया गया।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: And to listen to this interesting conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today in the evening at 5:10 p.m. You can also listen to the program on the News on EIR app and the News on EIR official YouTube channel.
3: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है। श्रोताओं, आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण जगत से एक बेहद सुखद खबर आई है। हमारे वन प्रहरियों के अथक संरक्षण प्रयासों की वजह से झारखंड के हजारीबाग में विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके दुर्लभ भारतीय गिद्धों की रौनक फिर लौट आई है। एक रिपोर्ट।
4: पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में झारखंड का हजारीबाग जिला देश के नक्शे पर एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। कभी गायब हो चुके गिद्धों के झुंड अब हजारीबाग के जंगलों, विशेषकर महावर पहाड़ और बरही वन क्षेत्रों में आसमान की ऊंचाइयों को नापते दिखाई दे रहे हैं। DFO मोहन प्रकाश बताते हैं कि हाल ही में यहां 50 से अधिक गिद्धों के बड़े कुनबे को एक साथ देखा गया है, जो इस बात का सबूत है कि संरक्षण की जमीनी कोशिशें अब रंग ला रही हैं।
5: हजारीबाग में वल्चर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। वल्चर्स आज हजारीबाग के 100 किलोमीटर के दायरे में लगभग 350 से लेकर 400 तक पाए जाते हैं। पूरे झारखंड में वल्चर्स की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 5 प्रजातियां हमारे हजारीबाग। तो वल्चर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है देश के अंदर, जो बहुत पहचान रखता है और यहाँ पे इसकी टोपोग्राफी ये फेवर करता है। वल्चर्स नॉर्मली क्लिफ्स में रहते हैं, तो यहाँ पर क्लिफ्स अवेलेबल हैं, जंगल अवेलेबल है, पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक कैटल सफिशिएंट।
4: गौरतलब है कि 1980 के दशक के बाद मवेशियों को दी जाने वाली डाइक्लोफेनिक दवा के कारण देश भर में गिद्धों की आबादी करीब 99% तक गिर गई थी, लेकिन इस खतरनाक दवा पर प्रतिबंध और वन विभाग द्वारा हजारीबाग कोडरमा क्षेत्र को वल्चर सेफ जोन घोषित किए जाने के बाद स्थिति बदली है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अमित जैन कहते हैं कि पिछले 15 वर्षों में इस सुरक्षित क्षेत्र में गिद्धों की कुल संख्या बढ़कर अब 400 के पार पहुंच चुकी है।
6: हमारे झारखंड में वल्चर की आबादी बढ़कर बहुत हो गई है, लगभग 450 से 500 इसकी आबादी हो गई है। आसपास के अलग अलग एरिया से वल्चर की रिपोर्ट हो रही है, जैसे कि रांची से, बड़कागांव क्षेत्र से, चतरा से, अलग अलग एरिया से रिपोर्ट हो रही है। ये बहुत ही सुखद बात है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए, कि वल्चर की आबादी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है।
4: वनों की रक्षा में 2400 घंटे तैनात वन कर्मियों की मुस्तैदी के कारण ही आज हजारीबाग के जंगलों में प्रकृति के इन सफाई कर्मियों यानी गिद्धों की गूंज दोबारा सुनाई दे रही है। आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर जंगलों की रक्षा में अपने प्राण गंवाने वाले वन वीरों को वन्य जीवों की इस सुरक्षित घर वापसी से खूबसूरत और बड़ी श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती। परिक्रमा के लिए रांची से कुंदन वर्मा के साथ मैं महविश रहमान।
2: And now we have a story from Andhra Pradesh where for years farmers in the drought prone areas of Prakasam district have depended on the monsoon for their crops and livelihoods. The first phase of the Pula Subbaiya Veligonda project has now brought new hope for a more reliable supply of water to the region. We have more on this from our correspondent.
7: Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu inaugurated the first phase of the Veligonda project on August 31st and dedicated it to the nation. The project will bring Krishna River water from the Srisailam Reservoir to the Nallamala Sagar Reservoir through two tunnels. The water will then be supplied through canals for irrigation and drinking purposes. The first phase has been completed at a cost of 7,983 crore rupees. It includes two tunnels covering 18.8 kilometers and feeder canal works of about 21.8 7.8 kilometers. The Nalamala Sagar Reservoir can store 10.70 TMC of water. The project is expected to provide irrigation to 119,000 acres and drinking water to about 4

0: that people. For farmers, the availability of water can reduce dependence on uncertain rains and provide better opportunities to grow crops and horticulture produce. It can also support employment and economic activity in villages. The Veligunda project is thus expected to bring a major change to the water situation in this drought-prone region. The state government has announced that the second phase of the project will be completed by 2028. With inputs from Alumurali, this is Suma for Parikrama, Akashvani News.
1: सोशल मीडिया और अत्याधुनिक तकनीक के इस दौर में तनाव हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। आज की इस भाग दौड़ और कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली जिंदगी में मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कई तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं। म्यूजिक थेरेपी यानी संगीत चिकित्सा भी इन्हीं में से एक कारगर उपाय है। महाराष्ट्र में अब इस दिशा में एक बेहद सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। आइए इस बारे में सुनते हैं ये विस्तृत रिपोर्ट।
2: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के विद्यार्थियों को पिछले करीब 40 वर्षों से दूरस्थ माध्यम यानी कि डिस्टेंस लर्निंग से शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसी विश्वविद्यालय की मान्यता से अब सूर्य संजीवन नाम का एक वर्षीय संगीत चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आने वाले 15 सितम्बर से इस पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। सूर्य संजीवन म्यूजिक थेरेपी ट्रस्ट के संस्थापक और वरिष्ठ सितार वादक पंडित डॉक्टर शशांक कट्टी ने आकाशवाणी को जानकारी देते हुए कहा,
3: ये सूर्य संजीवन म्यूजिक थेरेपी 4 साइंस के ऊपर आधारित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, आयुर्वेद, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कनेक्टेड विथ न्यूरो साइंस एंड ब्रेन एंटेनमेंट और मूड एलिवेशन थ्योरी, ये 4 बातों के ऊपर सूर्य संजीवन म्यूजिक थेरेपी आधारित है। म्यूजिक थेरेपी ये एक सिर्फ कला नहीं बल्कि मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने का एक असरदार इलाज है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी म्यूजिक थेरेपी में सूर संजीवन क्यूरेटिव म्यूजिक नाम का एक डिप्लोमा कोर्स शुरू कर रही है। इस कोर्स के जरिए स्टूडेंट्स को साइंटिफिक बेसिस पर म्यूजिक थेरेपी की जानकारी मिलेगी। यह म्यूजिक के जरिए कई लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने का मौका है। यह कोर्स दुनिया भर में ऑनलाइन अवेलेबल है और पुणे और मुंबई में ऑफलाइन भी अवेलेबल है। यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो म्यूजिक में करियर बनाना चाहते हैं। साथ में डॉक्टर्स, काउंसलर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, साइकियाट्रिस्ट और सोशल वर्क के फील्ड के प्रमोशन के लिए भी ये काम में आ सकती है।
2: संगीत के माध्यम से संतुलित स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन शैली का संदेश देने वाला ये पाठ्यक्रम म्यूजिक थेरेपी के क्षेत्र में एक नया अध्याय साबित होगा। परिक्रमा के लिए माधवी कुलकर्णी, पुणे।
1: अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की ताजा हलचल।
4: यस वैष्णवी, लेट्स बिगिन विथ यूएस ओपन टेनिस वेयर सेकंड सीड एलिना रिबाकिना डिफीटेड fourth seeded Coco Gauff in the second semifinal in New York, and with this win Rybakina has set up women's singles title clash with defending champion Aryna Sabalenka and stay on course for a third Grand Slam crown.
1: और टेनिस से चलते हैं हॉकी के मैदान में। जूनियर एशिया कप हॉकी में आज चीन के मोकी में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारतीय कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए जबकि सुखविंदर ने 1 गोल किया। 5 बार की चैंपियन भारत ने पूल ए के अपने आखिरी मैच में चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर शानदार अंदाज में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारतीय जूनियर महिला टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना करेगी।
4: एंड कमिंग टू द बिजनेस न्यूज, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन अ नेगेटिव टेरिटरी टुडे। द सेंसेक्स फेल 121 पॉइंट्स टू क्लोज एट 74,782। द निफ्टी ड्रॉप्ड 80 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,398।
1: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
5: विनायक नरहरि विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के पेण जिले में हुआ था। उन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। 1940 में विनोबा को गांधी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना। भावे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। 1940 में विनोबा को गांधी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना। विनोबा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था।
6: स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में

0: भूदान आंदोलन भी शुरू किया। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और लोगों से भूमि दान करने का आग्रह किया ताकि उसे भूमिहीन गरीबों में बांटा जा सके। उन्होंने गो हत्या के विरोध में भी आंदोलन चलाया।
1: विनोबा भावे विद्वान, चिंतक और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। वे मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत जैसी अनेक भाषाओं में पारंगत थे। हालांकि वे श्रीमद् भगवद गीता से अत्यधिक प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कुरान और बाइबल से भी प्रेरणा ली थी। 15 नवंबर 1982 को विनोबा भावे का निधन हुआ।
0: आज सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि भी है। आधुनिक भारत के महानतम कवि भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के इट्टयापुरम में हुआ था। वे आध्यात्मवादी और राष्ट्रवादी भी थे।
1: भजनों से लेकर राष्ट्रवादी लेखन तक भगवान और मनुष्य के बीच संबंध पर चिंतन मनन से लेकर रूसी और फ्रांसीसी क्रांति पर गीतों तक भारती ने विविध विषयों पर कलम चलाई।
0: तिलक और वीओ चिदम्बरम पिल्लई से संबंध के कारण भारती को गिरफ्तारी की आशंका बनी रहती थी, इसलिए वे पांडिचेरी चले गए जहां फ्रांस का शासन था। वहीं से वे स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए तमिल भाषा में ओजस्वी लेखन करते रहे। महान दूरदृष्टा भारती ने 1920 में लिखा, आइए नृत्य और गायन करें क्योंकि हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है।
1: जिस तरह वोल्टेयर और रूसो ने फ्रांसीसी क्रांति की ज्योति को प्रज्वलित किया, उसी तरह महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने तमिलनाडु में स्वाधीनता की मशाल जलाई।
0: भारत वापस आने और कैद से छूटने के बाद भारती ने महात्मा गांधी से मुलाकात की, जो भारती के बहुमुखी और निर्भीक व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने लोगों से भारती की सेहत का ध्यान रखने को कहा,
1: लेकिन ऐसा हो न सका। भारती का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 11 सितंबर 1921 को उनका निधन हो गया। जो कोयल पेड़ पर अकेली बैठी मधुर गाना गाती है, वो स्वयं तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके गीत सदैव गूंजते रहते हैं।
0: आज
2: मैं नीर भरी दुख के बदले, इन शब्दों में जैसे कोई पूरा जीवन कुछ ही क्षणों में उतर आता है। आगे कवित्री कहती है, रजकण पर जलकण हूँ बसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। यानी पीड़ा केवल दुख बनकर नहीं रहती, वे बरस कर किसी नए जीवन को जन्म भी दे सकती है। यही महादेवी वर्मा की कविता की विशेषता है। वेदना में भी करुणा है, अकेलेपन में भी संवेदना है और आंसुओं में भी सृजन की शक्ति है।
3: यस वैष्णवी, वी रिमेम्बर महादेवी वर्मा ऑन हर डेथ एनिवर्सरी एज अ पायनियरिंग पोएट, फ्रीडम फाइटर एंड अ कोर पिलर ऑफ द छायावाद मूवमेंट इन हिंदी लिटरेचर, हु वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1982 फॉर हर पोएटिक कलेक्शन यामा। She earned the title of Modern Meera for the deep emotional and spiritual intensity in her poetry, such as Deepshikha and Nihar. She was also known as the pillar of Chhayavad alongside poets like Jai Shankar Prasad, Sumitra Nandan Pant and Suryakant Tripathi Nirala, as she shaped romantic and philosophical trends in Hindi verse. She was also known as the Saraswati of Hindi because poet Nirala famously praised her as the Saraswati in the vast temple of Hindu literature. And she received many other prestigious awards as well, like Padma Bhushan in 1956 and Padma Vibhushan in 1988 and the Sahitya Academy Fellowship.
2: आज गजानन माधव मुक्तिबोध की पुण्यतिथि है। उनकी रचनाओं में व्यक्ति का आंतरिक संघर्ष, सामाजिक असमानता, व्यवस्था की विसंगतियां और एक बेहतर समाज की बेचैनी साथ साथ दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध लंबी कविताओं में अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस विशेष रूप से चर्चित है, जबकि चांद का मुंह टेढ़ा है उनका अत्यंत महत्वपूर्ण कविता संग्रह है। मुक्तिबोध ने कविता के साथ आलोचना और चिंतन के क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव छोड़ा था।
3: Moving on, we also pay tribute to a legendary Padma Shri awarded Rajasthanian Hindi poet, freedom fighter and a social reformer whose powerful nationalist writings immortalize the heritage and bravery of Rajasthan. Yes, I'm talking about Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia. Born in Sujangarh in Rajasthan, he actively participated in the Indian freedom struggle and championed the social welfare, environmental conservation and education. He was a passionate advocate for securing official recognition for the Rajasthani language at the national level. And known for his immortal works like Dhara Ro Shringar and the iconic poem, his poetry reflects profound human values and deep pride in regional identity. He was presented the Jaipur Kanhaiya Lal Sethia Award, is also presented at Jaipur Literature Fest, and he was on

0: honored with Padma Shri and also received the Rajasthan Ratan Award.
1: मराठी कविता को अगर पारंपरिक छंदों से बाहर निकालकर मुक्ति अभिव्यक्ति की ओर ले जाने वाले रचनाकारों की बात हो तो आत्माराम राव जी देशपांडे, जिन्हें साहित्य जगत में अनिल के नाम से जाना जाता है, का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उन्होंने मराठी कविता में देशपदी नामक 10 पंक्तियों वाली एक नई काव्य विधा के प्रयोग को भी विकसित किया था। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए अनुमति ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
0: नमस्कार, नमस्कार।

Da da da.

ஜன சன கநாரதம் நர்த்தன முரளிதரம் நதசுக சன

0: है प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई देशों के नेता इस समय नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच में शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कार्यक्रम में सदस्य देशों और साझेदार देशों के 2000 से अधिक उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स व्यापार मंच है।
1: मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज टू द वर्ल्ड।
2: ब्रिक्स देशों से दुनिया को होने वाला वस्तु निर्यात 2003 में करीब 900 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी भी करीब 12% से बढ़कर अब लगभग 24% हो गई है।
0: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप्स और उद्यम शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी चेन्नई வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட் அலைவரிசை நேரம் 6:05

0: ये आकाशवाणी है, आप प्रस्तुत है ब्रिक्स बिजनेस समिट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन।
1: एक्सलेंसीज, ब्रिक्स बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स, इनोवेटर्स और फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष हम ब्रिक्स के 20 इयर्स मना रहे हैं। 2006 में जब इस समूह की शुरुआत हुई थी तो इसमें केवल 4 देश थे। आज ब्रिक्स और ब्रिक्स पार्टनर्स मिलाकर 21 कंट्रीज का हमारा परिवार है। आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं। ग्रासरूट से लेकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज तक हमारे देशों में इनोवेशन की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। ब्रिक्स की बढ़ती स्केल, स्पीड और ऑप्टिमिज्म हमारे बीच साफ दिखाई दे रही है। भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है। फ्रेंड्स, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। पिछले 12 वर्षों में भारत ने इस मंत्र को अपनी इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज का आधार बनाया है। रेजिलियंस की बात करें तो भारत ने एनर्जी से लेकर टेक्नोलॉजी तक सप्लाई चेन्स को अधिक डाइवर्सिफाइड और रिलायबल बनाया है। इसी रेजिलियंस का परिणाम है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत आज ग्रोथ और स्टेबिलिटी का भरोसा दे रहा है। हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में भारत

ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, फ्रेंड, आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। 2 लाख के अधिक स्टार्टअप्स और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है। इसकी एक झलक आपको ब्रिक्स भारत इनोवेट एक्सपो में दिखाई देगी। हमारे स्टार्टअप्स एआई, एजुकेशन और हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरीज पर काम कर रहे हैं और डिफेंस और स्पेस में भी नए फ्रंटियर्स पार कर रहे हैं। अब हमें ब्रिक्स के माध्यम से भी इन वर्ल्ड क्लास इनोवेशंस को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना है। फ्रेंड्स, भारत इनोवेशन स्टोरी की एक और विशेषता है इनोवेशन एट पॉपुलेशन स्केल। भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं और इस डिजिटल लेयर पर नए सॉल्यूशंस बनाने के लिए हमने इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को एक ओपन इकोसिस्टम दिया है। हमें गर्व है कि भारत के इस वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम को कई देश अपना रहे हैं। ब्रिक्स देशों के इनोवेटर्स भी इस एक्सपीरियंस के आधार पर अपने देशों के लिए नए सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना। इसलिए हमारी अध्यक्षता में हमने एग्रीकल्चर, हेल्थ, स्किल्स और स्मार्ट ग्रिड जैसे क्षेत्रों में नए कोऑपरेशन नेटवर्क का गठन किया है। स्टार्टअप्स और एसएमईज को मार्केट और फाइनेंस से जोड़ने के लिए हमने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क, ब्रिक्स एमएसएमई पोर्टल और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड जैसी पहले की हैं। इन सभी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क्स का लाभ आप सभी उठा सकते हैं और हमारे देशों के बीच इन्वेस्टमेंट और टैलेंट का आदान प्रदान बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है। ब्रिक्स विमेन्स विंग्स बिजनेस अलायंस भी हमारे विजन का अहम हिस्सा है। हम चाहते हैं कि विमेन एंटरप्रेनर्स हमारी ग्रोथ स्टोरी को लीड करें। हमें बहुत खुशी है कि भारत में आयोजित इस अलायंस की मीटिंग में करीब 200 विमेन बिजनेस लीडर्स ने भाग लिया है।

0: आज जब ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल से मेरा आग्रह रहेगा, क्या आप ब्रिक्स देशों के बीच टॉप टेन ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए रिपोर्ट बना सकते हैं? क्या हम हर वर्ष 100 ब्रिक्स स्टार्टअप्स को दूसरे ब्रिक्स मार्केट्स में स्केल करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं? क्या हम अपने बिजनेसेस के बीच 1000 नई पार्टनरशिप विकसित कर सकते हैं? इन तीनों मापदंडों पर हमें हर वर्ष अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना चाहिए। आइए ब्रिक्स के एम्बिशन को एक्शन में और कलेक्टिव स्ट्रेंथ को ग्लोबल सॉल्यूशंस में बदले। ब्रिक्स आगे बढ़े और दुनिया को भी आगे बढ़ाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप ब्रिक्स बिजनेस समिट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। आइए अब सुनते हैं समाचार।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलनम भविष्यति, एतदर्थं मञ्चः सज्जः अस्ति। शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना रूसदेशस्य राष्ट्रपतये व्लादिमिर पुतिनाय, चीनदेशस्य राष्ट्रपतये शी चिनफिंग इत्यस्मै, दक्षिण अफ्रीकादेशस्य राष्ट्रपतये सिरिल रामाफोसाय, मिस्रदेशस्य राष्ट्रपतये अब्दुल फत्ताह असीसी इत्यस्मै, इंडोनेशियादेशस्य राष्ट्रपतये प्राबोवो सुबियांतो वर्याय, ईरान देशस्य राष्ट्रपतये मसूद पेजेश्कियन, अबुधाबी देशस्य युवराजाय शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यादिभ्यः विश्वनेतृभ्यः आतिथ्यं दीयते। भारतस्य अध्यक्षपदीयस्य 26वें वर्षस्य विषयः सुदृढतायै नवाचाराय सहकाराय सततविकासाय च निर्माणम् इत्यस्ति। समावेशी वैश्विक शासनम् अथ बहुपक्षवादस्य सुदृढीकरणम् इति विषये ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां कृते समापन सम्मेलनस्य माध्यमेन शिखर सम्मेलनं श्वः आरप्स्यते। ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां नेतारः भारत मण्डपम् इत्यत्र भारत नवान्वेषण प्रदर्शनं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। ते संयुक्त वृक्षारोपणम् अपि करिष्यन्ति। यस्यानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा मोदीवर्येण गाला डिनराख्यं संयुक्तभोजम् आयोजिष्यते। शिखरसम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा ब्रिक्स नेतृभिः सह अनेकानि द्वैपाक्षिकसम्मेलनानि आचरिष्यन्ते। श्वस्तनादारभमाणस्य 18वें ब्रिक्स शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां सम्पूर्णविश्वस्य नैकाः नेतारः समागच्छन्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। अद्य सामाजिकसञ्चारपटले श्रीमोदी विश्वासं प्रकटितवान् यत् अस्मिन् सम्मेलने विविधविषयेषु सकारात्मिका अर्थपूर्णा च चर्चा भविष्यति। यस्य मार्गदर्शकः उद्देश्यमस्ति विश्वस्य कल्याणमिति। भारतमण्डपमित्यत्र भविष्यति द्विदिवसात्मकं शिखरसम्मेलनम्। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारतम्, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूएई इत्यादीनि एकादशानि प्रमुखानि उदयोन्मुखानि विकासशीलानि च राष्ट्राणि एकत्रितानि भवन्तीति अस्माकं संवाददाता उक्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रूसदेशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमिर पुतिन इत्येतौ अद्य सायं नवदिल्ल्याः भारतमण्डपमित्यत्र द्विपक्षीयमन्त्रणां कृतवन्तौ। उभावपि नेतारौ परस्परहितसम्बद्धेषु विस्तरेण विचारविमर्शम् अकुरुताम्। मेलनेऽस्मिन् श्रीमोदिना प्राचीनतमिळदार्शनिककवेः तिरुवल्लुवरस्य तिरुकुरल् इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य रूसीभाषानुवादः राष्ट्रपतये पुतिनमहोदयाय उपहारत्वेन समर्पितः। प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिः पुतिनः च भारतमण्डपम् इत्यत्र

0: importance. And mind you, whereas we are 50% of the population, our GDP contribution is, I'm talking about the BRICS nation, is 40%.
1: Yes.
0: That means we need to further pace up. Obviously, we have grown faster than the rest of the world. Again, I'm talking about the BRICS nation. But we need to continue with this acceleration so that at least if there's a population of 50%, there's a scope,
1: yes,
0: tremendous scope to further pace up.
2: क्योंकि प्रकाश जी जैसा प्रधानमंत्री ने खुद ही जो हाईलाइट किया है अपने भाषण में कि दुनिया की 50% आबादी यहाँ रहती है, जैसा आप भी अभी बता रहे थे, और जीडीपी 40% है. तो अभी सचमुच इस दिशा में बहुत कुछ करने की ज़रूरत तो है, लेकिन अर्थव्यवस्था और अगर हम देखें पूरी आर्थिकी पर गौर करें तो जो ब्रिक्स के देश हैं वो पूरी दुनिया में जो ब्रिक्स के बाहर के देश हैं उनके मुकाबले किन क्षेत्रों में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकते हैं?
0: देखिए, एक तो जैसे स्कोप बहुत ज़्यादा है. अब आप इन्हीं फिगर्स में जो प्रधानमंत्री जी ने दी हैं उसमें एक फिगर है इंटरनेशनल ट्रेड का 25%. तो यहाँ तो बहुत स्कोप है. प्रधानमंत्री जी और हमारे विदेश मंत्री जी और हमारे यहाँ एक फोकस पॉइंट ये भी है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं अभी भी संसार में, जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटाने की ज़रूरत है. इसलिए भी ज़रूरत है ताकि हम अपना ट्रेड और बढ़ा पाएँ. हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं एमर्जिंग इकोनॉमीज़ के, ब्रिक्स नेशंस के, जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं तो उनको किसी तरह की नॉन टैरिफ बैरियर नहीं होना चाहिए. एक जो अब देखिए एक माहौल सा बना हुआ है जहाँ टैरिफ जो है, टैरिफ का वेपनाइजेशन होता है. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं है. और ये बिल्कुल सही एम्फेसाइज किया जा रहा है कि ब्रिक्स नेशंस ने बहुत अच्छा काम किया है इकोनॉमीज में, बट स्केल अप तो करना पड़ेगा. और मुझे उम्मीद है कि ये जो है दौर चलता रहेगा डिस्पाइट द चैलेंजेस, बिकॉज रेजिलियंस की बात भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं.
1: The International Monetary Fund, IMF, has described India as a key engine of global growth after the country's economy expanded 7.8% in the first quarter of current fiscal. The stronger than expected performance was driven by services and exports, even as the economy faced an energy price shock, said Julie Kojak, director of the IMF's communications department. So yet another, you know, validation coming in this time from the IMF that, you know, the economy has grown despite all the factors that talked about earlier, that despite all the factors that are happening right now, the things that are happening right now, India's economy is still expanding, you know, expanded by 7.8%. And as the IMF official said, that basically driven by services and exports. How do you see that?
0: Well, it shows, it underlines the resilience that the Indian economy showed up when it comes to dealing with the global headwinds. And you have sometime global headwinds converting into global storm, like what happened yesterday. The tension in the Middle East escalated and challenging the energy security. So under these circumstances, if you are able to grow at a pace at which we are growing, this definitely shows the resilience, inherent resilience of our economy.
1: And before we move forward, let's listen into what the Prime Minister said during the Business Forum meeting today.
3: Economic strength duniya ki tulna mein kareeb 2 guni raftaar se badi hai. BRICS desh global innovation aur solutions ke liye mahatvapurn centers bhi ban rahe hain. Grassroots se lekar frontier technologies tak hamare deshon mein इनोवेशन की नई संभावनाएं आकार ले रही है. ब्रिक्स की बढ़ती स्केल, स्पीड और ऑप्टिमिज्म हमारे बीच साफ दिखाई दे रही है. भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है.
1: Earlier today, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that resilience has become central to every nation's economic strategy, along with the need to foster and promote sustainability through deeper cooperation and stronger partnerships. Dr. Jaishankar was addressing the

0: BRICS Business Forum in New Delhi this morning ahead of the two-day 18th BRICS Summit beginning tomorrow. He noted that digital public infrastructure, artificial intelligence, fintech and advanced manufacturing offer major opportunities but also raise questions relating to access, standards, security and trust.
1: Today's forum brings together a much wider set of enterprises and sectors and provides a space to examine not only commercial opportunities but also the conditions that enable them. This wider canvas is reflected in the forum's agenda. Supply chain connectivity and trade facilitation have emerged to be crucial, but so do building robust services, agriculture and agri-technology, digital delivery, MSMEs, startups and women-led enterprises.
0: Addressing the opening session of the forum, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal called upon BRICS nations to work together to translate their economic strengths into jobs, wealth and prosperity for their people.
2: Friends, BRICS today represents almost one-fourth of global trade and India is an important pillar of the intra-BRICS trade. Engineering goods and electronics account for the largest segment of India's manufactured export. India is also known as the pharmacy of the world. We see BRICS as an important market for these and other products that India seeks to take to the world as a trusted partner.
3: प्रकाश जी, अभी हमने बातें सुनी डॉक्टर एस जयशंकर की और पीयूष गोयल जी की. जैसा कि अभी हमारे एस जयशंकर जी ने कहा कि भारत को दृढ़ता अभी दिखानी होगी हमें, एक्चुअली हर देश को दिखानी होगी ब्रिक्स में. और उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है जो संवहनीयता पर, सस्टेनेबिलिटी पर. और इसके अलावा अगर हम देखें आगे जो पीयूष गोयल जी ने कहा है, तो ये बातें अभी कुल मिलाकर क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में ब्रिक्स देशों को एक नई दिशा में ले जाने का काम करेंगी?
4: देखिए जी, दोनों मंत्री महोदय की बात को अगर मिला
3: जोड़
4: दिया जाए
3: के जी.
4: तो रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी के अलावा पीयूष गोयल जी ने बड़ी अहम बात ये की है कि मार्केट जो है विद इन द ब्रिक्स, जहाँ 40% जीडीपी है, विद इन द ब्रिक्स अगर हम मार्केट्स और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं और ज़्यादा एक्सेस दें एक दूसरे को, तो देर इज समथिंग कॉल्ड लुकिंग बियॉन्ड अमेरिका, लुकिंग बियॉन्ड वेस्टर्न वर्ल्ड. वो जो है ना फदंटा, बिकॉज देन अगर आपको डाइवर्सिफाई तो करना होगा. और हेयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि भाई आप विद इन ब्रिक्स में ट्रेड को बढ़ाइए, एक्सेस दीजिए एक दूसरे को, कंट्री टू कंट्री करेंसी का वो यूज़ कीजिए एक दूसरे का.
0: Yeah, that is exactly the point I want to make, you know, Mr. Chawla, because Piyush Goyal did say, the minister did, you know, he called upon the BRICS members to, you know, link the India's payment systems to their systems, as well as he urged the countries to trade in each other's local currencies, make digital trade global and build together for the future emerging technologies. How important is this, especially this emphasis on, you know, strengthening the digital payment system of the various countries and linking it? Because there's always been this talk of de-dollarization has been, you know, one of the things in BRICS.
4: Well, the talk of de-dollarization offends a few people.
0: Yes,
4: few countries in the world. So without that, without de-dollarization, because that could be an issue, without that, the country to country trade,
0: yes,
4: in local currency is very important step as suggested by Mr. Piyush Goyal, and that I think we expect a way forward, some movement
0: right
4: during this summit.
0: Right.
3: जी, और ब्रिक्स देशों ने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं सहित एक तरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है. सदस्य देशों ने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और यह विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के अनुरूप नहीं है. उन्होंने WTO को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति समर्थन दोहराया. भारत की अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई. मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव, व्यापार में बिखराव, संरक्षणवाद, नीतिगत अनिश्चितता, राजकोषीय और मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, बढ़ते कर

0: कर्ज और वित्तीय जोखिमों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां बनी हुई हैं। प्रकाश जी, हम वित्त मंत्रियों की बात भी हमने सुनी जो कल बात हुई है, और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स ने भी कहा है, और सबने वही जो आप पहले कह रहे थे, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था होनी चाहिए। आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे?
1: नहीं, बहुत सही बात है। बहुत बड़ी चिंता है कि जो मल्टीलेटरलिज्म है उसको एक खतरा हो रखा है आजकल में, जब टैरिफ को हमने एक तरह वेपन बना दिया है काफ़ी मुल्कों ने, और ख़ासतौर पर ख़ास एक देश ने अपना वेपन बना लिया है, और वो वेपनाइजेशन जो टैरिफ को आप करते हैं तो पूरे संसार में उसका असर पड़ता है, और मल्टीलेटरलिज्म के फ्यूचर पे भी सवाल खड़ा होता है। इसलिए ये

0: लिटरिज्म के फ्यूचर पे भी सवाल खड़ा होता है, इसलिए ये जो चिंता जाहिर की गई है ये बड़ी ही वाजिब चिंता है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है
1: जी। और चलिए अब नज़र डालते हैं हम अब आज शेयर बाज़ारों का क्या हाल रहा। देश के शेयर बाज़ारों के प्रमुख सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 121 अंक गिरकर 74,782 पर बंद हुआ। निफ्टी 80 अंक नीचे 23,398 पर आ गया। एनएसई का मिड कैप 100 0.3% गिरा, जबकि स्मॉल कैप 100 में 0.6% की गिरावट आई। आज कारोबार की शुरुआत में सूचकांक काफ़ी गिरावट के साथ खुले थे। कच्चे तेल की तेज़ कीमतों और निवेशकों की सावधानी का असर बाजार पर दिखाई दिया। आखिरी घंटे में सूचकांक अपने निचले स्तर से थोड़ा ऊपर तो आए, लेकिन नुकसान में ही बंद हुए।
2: Benchmark domestic equity indices ended in negative territory today. The Sensex fell 121 points to close at 74,782. The Nifty dropped 80 points to settle at 23,398. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index declined 0.3% and the Small-Cap 100 index dipped 0.6%. Earlier, the markets opened with a gap down and traded with losses, weighed down by elevated crude oil prices and cautious investor sentiment. However, the indices spared initial losses during the final hour, supported by value buying and decline in oil prices.
1: और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे। सबसे ज़्यादा गिरावट वाले शेयरों पर नज़र डालें, टाटा स्टील में 1.7%, रिलायंस में 1.3% और सन फार्मा में 1.2% की गिरावट रही। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों में HDFC बैंक में 2%, टेक महिंद्रा में 1.4% और HCL टेक में 0.8% से अधिक की बढ़त देखी गई।
2: In the sectoral indices on the BSE, 20 out of 28 sectors edged downward. Among the underperformers, realty lost 2.7%, metal dropped 2.4% and commodities fell 1.6%. In contrast, telecommunication advanced 1%, private banks gained 0.5% and IT added 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,471 companies declined, shares of 1,854 companies advanced, while shares of 234 companies remained unchanged.
1: जी प्रकाश जी, बाजार का हाल हमने बता दिया। शुरू में आज काफी गिरावट थी, थोड़ा बीच में लगभग फ्लैट होने की हालत तक फिर बढ़ा था, लेकिन अंत में फिर 121 अंक सेंसेक्स गिरा है और निफ्टी भी 80 अंक नीचे आ गया है। इसको देखें और इसके साथ पूरे पूंजी बाजार को अगर हम देखें, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बॉन्ड मार्केट की क्या हालत है पूरी दुनिया में, और जिस तरह से जो पैसे का मूवमेंट है किन बाजारों से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, जापान अपने पैसे वापस ले रहा है, क्या इन सब का एक सस्टेन्ड असर अब दुनिया के बाजारों पर दिखाई देना शुरू होगा?
0: नहीं, पूरे बाजार में पहले आज की बात करते हैं
1: जी। आज
0: आज
1: जी।
0: सुबह तो बुरा हाल था
1: जी,
0: फिर रिकवरी आई, बड़ी अच्छी रिकवरी आई। अब रिकवरी जो आई वो इस तरह से नहीं आई कि जैसे संकट दूर हो गया। रिकवरी इसको ट्रेड पार्लर्स में, टेक्निकल ट्रेड्स में शॉर्ट कवरिंग हुई। लोग जब पैनिक हुआ सुबह तो ट्रेडर्स ने शॉर्ट सेलिंग काफ़ी धड़ल्ले से की। जब धड़ल्ले से शॉर्ट सेलिंग हुई तो शॉर्ट सेलिंग के अपने रिस्क होते हैं, उसको कवर करने की कोशिश की गई, इसलिए स्मार्ट रिकवरी आई। और ये एक ट्रेड काइंड ऑफ है वो है, लेकिन इससे ये नहीं कि दुनिया की चिंता दूर हो गई।
1: ये दैनिक, ये तो आज का था,
0: आज का था। अब हम बात करते हैं कि ये कारण क्या है, कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण जो लेटेस्ट था कि जो मिडिल ईस्ट में जो उथल पुथल है और बदतर हो गई। पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कत थी, अब रेड सी में दिक्कत हो रही, तब दोनों चैनल आपके ट्रेड बंद हो जाएगा, शिपिंग रूट्स बंद आएंगे, और जाहिर बात है उसका असर हमको तेल की मार्केट में मिला। क्रूड ऑयल जो 110 तक पहुंचा, फिर वापस रिकवरी हुई, तो ये उतनी उथल पुथल में मार्केट का इन्वेस्टर नर्वस हो जाता है। तो अब आपने कहा कि कारण क्या है, एक कारण तो मिडल ईस्ट है, दूसरा कारण आपने कहा बॉन्ड यील्ड का। अब बॉन्ड यील्ड जो है एक अपने आप में जेम्स बॉन्ड बन गया है, तो वो एक अपने आप में एक खतरा है। वो क्या दर्शाता है बॉन्ड यील्ड्स का, मतलब आम आदमी की भाषा में बोला जाए ये दर्शाता है बॉन्ड यील्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका में तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है, ये दर्शाता है आम भाषा में कि इन्फ्लेशन का जो डर है लार्जली अराइजिंग आउट ऑफ द मिडल ईस्ट प्रॉब्लम एंड और बाकी चीज़ों

0: चीज़ों से। इन्फ्लेशन का जो खतरा है बड़ा मंडरा रहा है पूरे वर्ल्ड पे, और उसके कारण मिडिल ईस्ट भी है, उसका कारण पूरे जो संसार में खासतौर पर अमेरिका में जो उनका डेट है, उनका उधार है $40 trillion, वो अनसस्टेनेबल कोशिश की जा रही है। वहाँ के जो फाइनेंस मंत्री हैं, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से मैं इसकी फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग कर पाऊँगा, लेकिन री इंजीनियरिंग जो है वो एक बैंडेड होती है, उससे काम नहीं चलता
1: जी।
2: लेकिन क्या आने वाले समय में हम पूंजी बाजार में एक रीबैलेंसिंग देखेंगे?
0: रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, जो मैंने आपको समझाया, तो जो कैपिटल तो वहीं जाता है जहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, जब कमाई ज़्यादा होती है। तो इक्विटी मार्केट में रिस्क होता है, बॉन्ड यील्ड में आपको फिक्स इनकम मिलती है। आपको अगर अमेरिका में 5-5.5% मिल जाता है, 5% मिल जाता है, और देन अगर आपके एमर्जिंग इकोनॉमीज में थोड़ी दिक्कत होती है कि उसमें करेंसी डेप्रिसिएशन का या करेंसी फ्लक्चुएशन का फैक्टर इन करना पड़ता है, तो सेफ्टी की तरफ कैपिटल पूंजी घूम जाती है, और वो जो है उसका असर जो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट में इतना अच्छा नहीं पड़ता
2: जी। और देखें रुपए का हाल, अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 10 पैसे गिरकर ₹95.55 पर बंद हुआ। और अनुभव हमारे पास एशिया और यूरोप के बाजारों की भी खबरें हैं। एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में आज लगभग 1.8% की गिरावट आई, जबकि जापान का निक्केई 1.9% से ज़्यादा गिरा। यूरोपीय बाजारों में ताज़ा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.6% ऊपर था, जर्मनी का डैक्स 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। यूके का रियल जीडीपी जुलाई में 0.4% बढ़ा, जबकि जून में ये 0.3% बढ़ा था।
1: Let's move on to the US markets. Major US indices ended lower for the fourth consecutive session yesterday with elevated bond yields and crude oil prices weighing on investor sentiment. The Nasdaq composite declined more than 0.6% and the Dow Jones Industrial Average as well as the S&P 500 fell 0.6%. On the economic front, the producer price index PPI for final demand rose 0.4% in August, following a 0.1% increase in July. According to the latest release data released by the U.S. Bureau of Labor Statistics, PPI increased 5.4% last month on an annual basis, up from 4.8% in July. Mr. Chawla, we see that, you know, the PPI for the month of August in US has risen to 0.4%. Now, there is a very important meeting which is going to happen, US Fed meeting happening next week on the 15th and 16th September. What are your expectations given the fact that the PPI has risen, given the fact that international crude oil prices are have, you know, gone beyond $100 per barrel? What is the expectation? Is the chairman, Kevin Warsh, and his cohorts going to go in for a hike, start the hike rate hike cycle, or are they going to stay put and, you know, hold the rates?
0: Well, the chances of our rate hikes are have gone up.
1: Okay.
0: And the latest inflation numbers of the US, both CPI and the PPI. PPI means the wholesale
1: price. Yes, CPI is expected later consumer. Tonight. Yeah.
0: I think it's to come yeah. about. So what has happened is, anyways, the inflation specter of inflation is very, very much there, and Fed has not much choice left now. They don't have much choice left,
1: okay.
0: And the rate hike is given. The question is 1, 2, 3, 4. How many rate hikes are there?
1: And because, also, the question is when.
0: Well, not in too far distant. For a common man point of view, when you say rate hikes, Fed rate hikes, bond yields, it means the mortgage rates,
1: yes,
0: the credit card rates, the interest rates for American consumers are going to shoot up.
1: Hmm.
0: The cost of living crisis might be there. People are already feeling the pressure.
1: Yes.
0: So these things are, and mind you, economists and the experts also point that these high interest rate regime is not a short-term phenomena, mind you.
1: Okay.
0: It's going, we are in for a long haul. So the countries must buckle up. They must prepare themselves for a scenario where interest rates continue to remain high. The party time is over.
2: वैसे भी नैस्डेक को लेकर तमाम आशंका

0: राहें जताई जा रही हैं कि अब बुल रन खत्म हुआ.
1: जी, लेट्स मूव ऑन टू कमोडिटीज. ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल टुडे.
0: से पहले मुझे लगता है क्रूड के संबंध में अभी और भी काफी कुछ खबरें हैं अनुभव जो प्रकाश जी से हमें चर्चा करनी चाहिए. कि अभी जैसा कह रहे थे हम, पूरी दुनिया के बाजारों पर असर डालने वाला एक सबसे बड़ा कारक यह है कि सप्लाईज, हमारे क्रूड की सप्लाई कैसे होगी, कहां से होगी, रास्ते बंद होते जा रहे हैं. और आईईए ने जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें यह भी है कि कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति में रोजाना 57 लाख बैरल की गिरावट आने की आशंका है. मतलब इससे फिर अब डेली जो सप्लाई है वो 10 करोड़ 7 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगा वो डेली सप्लाई.
2: आईईए ने तो एक अपनी रिपोर्ट जारी किया, नंबर्स दिया है, बट ये जो आशंका है ये कोई इसलिए कोई अंग्रेजी में बोलते हैं नो ब्रेनर.
1: जी,
2: तो नो ब्रेनर है जब ऐसे
0: है ही, दिखाई दे ही रहा है.
2: तो वो उन्होंने एक नंबर दे के आपको स्टैंप लगा दिया, तो वो तो एक है, गिवन है. तो अब उसमें इसके फिर सवाल ये है कि ये सिचुएशन ऐसी थी कि वार जो है जब अब 6 महीने से ज़्यादा हो गए वार को मिडल ईस्ट में, उधर से यूक्रेन रशिया को जो है उसमें भी ग्लोबल सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो रही है. तो ऐसी शंका जताई जा रही है और ऐसा डर है और ऐसा वो है कि भाई आर्मी ने सिचुएशन कि भाई जहाँ पे अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर एवर वॉर,
1: जी,
2: जब ऐसी सिचुएशन में तो मुल्कों को, अपने अपने देशों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से प्रिपेयर्डनेस की जाए, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनाए जाएं, क्लीन फ्यूल की तरफ, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ के लिए आ जाए. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट.
0: इसके साथ साथ ये अनुमान भी है कि इस साल वैश्विक तेल की मांग में 25 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट भी आएगी, जो कि पहले के 16 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट के पूर्वानुमान से थोड़ी ज़्यादा है. तो अब दोनों श्रिंक होने की बात हो रही है कि शायद मांग में भी गिरावट. अब
2: उसका मुझे अंदेशा है क्योंकि डिमांड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई रिसेशन आ रहा है, उसका मुझे थोड़ा अंदेशा है.
1: जी, एंड लेट्स गेट बैक टू द कमोडिटी प्राइसेस. लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल टुडे. ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.2% डाउन एट $104.15 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस रिपोर्ट. वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.2% डाउन एट $99.17 पर बैरल.
0: और भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.9% गिरकर 1,51,938 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. चांदी 2% की गिरावट के साथ 2,28,920 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. आज अनुभव वक्त इतना ही है, खबरें तो और भी बहुत कुछ हैं लेकिन अब चलते हैं. प्रकाश जी कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
1: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस लीडर्स सेशन ऑफ ब्रिक्स बिजनेस फोरम. सेज ब्रिक्स नेशंस आर इमर्जिंग एज की हब्स फॉर ग्लोबल इनोवेशन एंड सॉल्यूशंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स 121 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,400, and global oil supply and demand to further contract this year, says International Energy Agency. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं. नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही.
5: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं. इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है. यानी ब्रिक्स

0: की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब दो गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है। उन्होंने मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया और स्केल फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया। इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच वार्ता हो रही है। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 2-3 दिन तक बादल छाए रहने और वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that BRICS nations are emerging as important centres of global innovation and solutions. Addressing the leaders' session of BRICS Business Forum at Bharat Mandapam in New Delhi this evening, Mr. Modi said, today, BRICS nations represent 50% of the world's population, 40% of its GDP and over 25% of the global trade.
0: Aaj BRICS ke desh vishv ki 50% population, 40% GDP aur 25% se adhik trade ko represent karte hain. Itna hi nahi, in varshon mein jahan global

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி ஆங்கில செய்தி அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அரோரா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% GDP और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल GDP करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड GDP करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है। उन्होंने मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया और स्किल

0: फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया। इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशियन के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता में दोनों देशों के बीच सहयोग और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी वार्ता की। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। यमन में हौसी विद्रोही रणनीतिक बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य की ओर बढ़ रहे हैं। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार हौसी विद्रोही जलडमरू मध्य के पास स्थित तटीय शहर धुबाब और रणनीतिक पेरेम द्वीप तक पहुंच गए हैं। ये घटनाक्रम हौसी विद्रोहियों के लाल सागर स्थित मोखा बंदरगाह पर कब्जे की खबरों के बाद सामने आया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। वहीं जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has said that BRICS nations are emerging as important centers of global innovation and solutions. Addressing the leaders' session of BRICS Business Forum at Bharat Mandapam in New Delhi this evening, Mr. Modi said, today BRICS nations represent 50% of the world's population, 40% of its GDP and over 25% of global trade.
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है।
1: The Prime Minister called for Make in India, Innovate with India and Scale for the World.

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Ini Bharatiya Sena.
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी

0: भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत

0: की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियां, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
2: आज आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जब आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया, संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। 4 चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडबरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हाउसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हाउसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Russian President Vladimir Putin ahead of the 18th BRICS summit in New Delhi. Discusses progress across political, economic, defense, energy and regional and global issues. Prime Minister Modi reiterates on dialogue and diplomacy to resolve conflicts. Prime Minister also holds bilateral meetings with Iranian President and United Nations Secretary General. Heads of BRICS member countries attend leaders' session of BRICS Business Forum. PM Modi says economic strength of BRICS grew at nearly twice the pace of rest of the world. Iran-backed Houthi rebels capture Yemen's strategic Mayun Island in the Bab al-Mandeb Strait near Red Sea. And in hockey, Indian junior men's team enter final of Asia Cup defeating Malaysia at Mochi in China. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains today. During the bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts, and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcomed Russia's International Industrial Exhibition, InnoProm India. The exhibition was held for the first time in India since the 9th of this month till today, and underscored its importance in further

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल में हुए घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और

0: नागरिकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबाओ सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: initiatives to frontier technologies are taking shape within the BRICS countries.
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है.
0: Addressing the forum, Russian President Vladimir Putin said over the last 5 years, more than 40% of the world's GDP has been produced by the BRICS countries. He said BRICS countries account for more than half of the world's population, and that is why they have a great dynamic, vibrant domestic markets. Iranian President Masoud Pezeshkian suggested that one of the most important steps is to expand the use of national currencies in trade among the members. He said this step must be accompanied by the establishment of the necessary instruments for managing currency risks and reciprocal settlements. The stage is all set for the 18th BRICS summit to be held at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. During the summit, Prime Minister Narendra Modi will play host to the world leaders including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran's President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan and Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim arrived in New Delhi to attend the BRICS summit. Deputy Prime Minister of Russia Alexei Ovchuk, President of Egypt Abdel Fattah al-Sisi, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali are among several dignitaries who have arrived for the summit. President of ASSOCHAM Nirmal K. Minda said that Prime Minister's vision of transforming BRICS cooperation into concrete business outcomes is highly significant. He added that deepening trade, investment, technology, startup and business partnerships among BRIC economies can unlock enormous opportunities and create new avenues for inclusive and sustainable growth. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विनय सक्सेना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई. श्री मोदी ने फिर से कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता. प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की. ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए. प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में तेज गति से बढ़ी है. ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण म्यून द्वीप पर कब्जा किया. और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने आज राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल आदान प्रदान और दोनों देशों के लोगों के संबंधों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की. दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्षों सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए. प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति के प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है. दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के प्रयासों में संलग्न रहने पर सहमति व्यक्त की. यह साझेदारी लगातार महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज कर रही है और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद लचीलापन दिखा रही है. राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया. प्रधानमंत्री

0: निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इस रुख को दोहराया है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हालिया घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद ब्रिक्स से संबंधित बैठकों में ईरान की नियमित और उच्च स्तरीय भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति पेजेश्कियन को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज शाम ब्रिक्स बिजनेस फोरम के नेताओं के सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश आज दुनिया की 50% आबादी, करीब 40% वैश्विक GDP और 25% से अधिक वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि में जहां वैश्विक GDP तेजी से बढ़ रही है, वहीं विकास भी हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% GDP और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल GDP करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड GDP करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है। श्री मोदी ने कहा कि भारत नौवहन की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा कि विनिर्माण प्रौद्योगिकी और मूल्य सृजन में विकासशील देशों को नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने एकतरफा प्रतिबंधों पर भी चिंता व्यक्त की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सुझाव दिया कि सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक सदस्य देशों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग का विस्तार करना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। ईरान समर्थित

0: विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया ने पाकिस्तान को 4-1 से पराजित किया। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबकीना ने महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में एलेना ने चौथी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ को 3-6, 6-4, 6-4 से हराया। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की एलेना का सामना मौजूदा चैंपियन और अरियाना सबलंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की सबलंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को 7-5, 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज रात जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला रूस के कारेन खाचानोव से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में 2 अमरीकी खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर से कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण द्वीप पर कब्जा किया। इसके साथ ही इस विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Russian President Vladimir Putin ahead of 18th BRICS summit in New Delhi. Discusses progress across political, economic, defence, energy, regional and global issues. Prime Minister Modi reiterates on dialogue and diplomacy to resolve conflicts. Prime Minister also holds bilateral meetings with Iranian President and United Nations Secretary General. Heads of BRICS member countries attend leaders' session of BRICS Business Forum. Iran-backed Houthi rebels capture Yemen's strategic Mayu Island in Bab al-Mandab Strait near Red Sea. And in hockey, Indian junior men's team enters final of Asia Cup, defeating Malaysia at Mochi in China. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defence, energy, space, skill mobility and people-to-people domains today. During the bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcomed Russia's International Industrial Exhibition, InnoProm India. During his bilateral meeting with Iranian President Masoud Pezeshkian, Prime Minister Modi exchanged views on recent developments in West Asia. Mr. Modi reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi also underscored the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region, safeguarding freedom of navigation and commerce and safety and well-being of seafarers. Mr. Modi thanked Iran for its regular high-level participation in BRICS-related meetings.

0: This is FM Gold Chennai. Please stand by for the news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
2: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति

राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: like what happened yesterday, the tension in the Middle East escalated and challenging the energy security. So under these circumstances, if you are able to grow at a pace at which we are growing, this definitely shows the resilience, inherent resilience of our economy.
1: And before we move forward, let's listen into what the Prime Minister said during the Business Forum meeting today.
2: इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब दो गुनी रफ्तार से बढ़ी है. ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं. ग्रास रूट से लेकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज तक हमारे देशों में इनोवेशन की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं. बढ़ती स्केल स्पीड और ऑप्टिमिज्म हमारे बीच साफ दिखाई दे रही है. भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है.
1: Earlier today, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that resilience has become central to every nation's economic strategy, along with the need to foster and promote sustainability through deeper cooperation and stronger partnerships. Dr. Jaishankar was addressing the BRICS Business Forum in New Delhi this morning ahead of the two-day 18th BRICS Summit beginning tomorrow. He noted that digital public infrastructure, artificial intelligence, fintech and advanced manufacturing offer major opportunities, but also raise questions relating to access, standards, security and trust.
3: Today's forum brings together a much wider set of enterprises and sectors and provides a space to examine not only commercial opportunities but also the conditions that enable them. This wider canvas is reflected in the forum's agenda. Supply chain connectivity and trade facilitation have emerged to be crucial, but so do building robust services, agriculture and agri-technology, digital delivery, MSMEs, startups and women-led enterprises.
1: Addressing the opening session of the forum, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal called upon BRICS nations to work together to translate their economic strengths into jobs, wealth and prosperity for their people.
4: Friends, BRICS today represents almost one-fourth of global trade, and India is an important pillar of the intra-BRICS trade. Engineering goods and electronics account for the largest segment of India's manufactured export. India is also known as the pharmacy of the world. We see BRICS as an important market for these and other products that India seeks to take to the world as a trusted partner.
5: Ji. प्रकाश जी, अभी हमने बातें सुनी डॉक्टर एस जयशंकर की और पीयूष गोयल जी की. जैसा कि अभी हमारे एस जयशंकर जी ने कहा कि भारत को दृढ़ता अभी दिखानी होगी हमें, एक्चुअली हर देश को दिखानी होगी ब्रिक्स में. और उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है जो संवहनीयता पर, सस्टेनेबिलिटी पर. और इसके अलावा अगर हम देखें आगे जो पीयूष गोयल जी ने कहा है, तो ये बातें अभी कुल मिलाकर क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में ब्रिक्स देशों को एक नई दिशा में ले जाने का काम करेंगी?
0: देखिए जी, दोनों मंत्री महोदय की बात को अगर मिला दिया जाए तो रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी के अलावा पीयूष गोयल जी ने बड़ी अहम बात ये की है कि मार्केट जो है विद इन द ब्रिक्स, जहाँ 40% जीडीपी है, विद इन द ब्रिक्स अगर हम मार्केट्स और ज्यादा स्ट्रांग बनाएं और ज्यादा एक्सेस दें एक दूसरे को, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड लुकिंग बियॉन्ड अमेरिका, लुकिंग बियॉन्ड वेस्टर्न वर्ल्ड. वो जो है ना फर्दर बिकॉज देन अगर आपको डाइवर्सिफाई तो करना होगा, और हेयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि भाई आप विद इन ब्रिक्स में ट्रेड को बढ़ाइए, एक्सेस दीजिए एक दूसरे को, कंट्री टू कंट्री करेंसी का वो यूज कीजिए एक दूसरे का.
1: Yeah, that is exactly the point I want to make, you know, Mr. Chawla, because Piyush Goyal did say, the minister did, you know, he called upon the BRICS members to, you know, link the India's payment systems to their systems, as well as he urged the countries to trade in each other's local

0: currencies, make digital trade global, and build together for the future emerging technologies. How important is this, especially this emphasis on, you know, strengthening the digital payment system of the various countries and linking it? Because there's always been this talk of de-dollarization has been, you know, one of the things in BRICS.
1: Well, the talk of de-dollarization offends a few people.
0: Yes.
1: Few countries in the world. So without that, without de-dollarization, because that could be an issue, without that, the country-to-country trade
0: yes.
1: in local currency mm-hmm. is very important step, as suggested by Mr. Piyush Goyal, and that I think we expect the way forward, some movement right. during this summit.
0: Right.
2: जी और ब्रिक्स देशों ने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं सहित एक तरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है. सदस्य देशों ने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और यह विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के अनुरूप नहीं है. उन्होंने WTO को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति समर्थन दोहराया. भारत की अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में यह बात कही गई. मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव, व्यापार में बिखराव, संरक्षणवाद, नीतिगत अनिश्चितता, राजकोषीय और मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, बढ़ते कर्ज और वित्तीय जोखिमों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां बनी हुई हैं. प्रकाश जी, हम वित्त मंत्रियों की बात भी हमने सुनी जो कल बात हुई है, और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स ने भी कहा है, और सबने वही जो आप पहले कह रहे थे, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था होनी चाहिए. आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे?
1: नहीं, बहुत सही बात है. बहुत बड़ी चिंता है कि जो मल्टीलेटरलिज्म है उसको एक खतरा हो रखा है आजकल में, जब टैरिफ को हमने एक तरह वेपन बना लिया है. काफ़ी मुल्कों ने, और ख़ासतौर पे खास एक देश ने अपना वेपन बना लिया है, और वो वेपनाइजेशन जो टैरिफ को आप करते हैं तो पूरे संसार में उसका असर पड़ता है, और मल्टीलेटरलिज्म के फ्यूचर पे भी सवाल खड़ा होता है. इसलिए ये जो चिंता जाहिर की गई है, ये बड़ी ही वाजिब चिंता है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है.
2: जी, और चलिए अब नज़र डालते हैं हम अब आज शेयर बाजारों का क्या हाल रहा. देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 121 अंक गिरकर 74,782 पर बंद हुआ. निफ्टी 80 अंक नीचे 23,398 पर आ गया. एनएसई का मिड कैप 100 0.3% गिरा, जबकि स्मॉल कैप 100 में 0.6% की गिरावट आई. आज कारोबार की शुरुआत में सूचकांक काफी गिरावट के साथ खुले थे. कच्चे तेल की तेज कीमतों और निवेशकों की सावधानी का असर बाजार पर दिखाई दिया. आखिरी घंटे में सूचकांक अपने निचले स्तर से थोड़ा ऊपर तो आए, लेकिन नुकसान में ही बंद हुए.
0: Benchmark domestic equity indices ended in negative territory today. The Sensex fell 121 points to close at 74,782. The Nifty dropped 80 points to settle at 23,398. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index declined 0.3% and the Small-Cap 100 index dipped 0.6%. Earlier, the markets opened with a gap down and traded with losses, weighed down by elevated crude oil prices and cautious investor sentiment. However, the indices spared initial losses during the final hour, supported by value buying and decline in oil prices.
2: और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे. सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों पर नजर डालें, टाटा स्टील में 1.7%, रिलायंस में 1.3% और सन फार्मा में 1.2% की गिरावट रही. सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में HDFC बैंक में 2%, टेक महिंद्रा में 1.4% और HCL टेक में 0.8% से अधिक की बढ़त देखी गई.
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द BSE, 20 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एज्ड डाउनवर्ड. अमंग द अंडर परफॉर्मर्स, रियलिटी लॉस्ट 2.7%, metal dropped 2.4% and commodities fell 1.6%. In contrast, telecommunication advanced 1%, private banks gained 0.5%, and IT added 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,471 companies declined, shares of 1,854 companies advanced, while shares of 200

0: 134 companies remained unchanged.
1: जी प्रकाश जी, बाजार का हाल हमने बता दिया. शुरू में आज काफी गिरावट थी, थोड़ा बीच में लगभग फ्लैट होने की हालत तक फिर बढ़ा था, लेकिन अंत में फिर 121 अंक सेंसेक्स गिरा है और निफ्टी भी 80 अंक नीचे आ गया है. इसको देखें और इसके साथ पूरे पूंजी बाजार को अगर हम देखें, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बॉन्ड मार्केट की क्या हालत है पूरी दुनिया में, और जिस तरह से जो पैसे का मूवमेंट है किन बाजारों से निकल रहा है और कहां जा रहा है, जापान अपने पैसे वापस ले रहा है, क्या इन सब का एक सस्टेन्ड असर अब दुनिया के बाजारों पर दिखाई देना शुरू होगा?
2: नहीं, पूरी पूरे बाजार में पहले आज की बात करते हैं.
1: जी आज,
2: आज सुबह तो बुरा हाल था
1: जी,
2: फिर रिकवरी आई, बड़ी अच्छी रिकवरी आई. अब रिकवरी जो आई वो इस तरह से नहीं आई कि जैसे संकट दूर हो गया. रिकवरी इसको ट्रेड पार्लेंस में, टेक्निकल ट्रेड्स में शॉर्ट कवरिंग हुई. लोग जब पैनिक हुआ सुबह तो ट्रेडर्स ने शॉर्ट सेलिंग काफ़ी धड़ल्ले से की. जब धड़ल्ले से शॉर्ट सेलिंग हुई तो शॉर्ट सेलिंग के अपने रिस्क होते हैं, उसको कवर करने की कोशिश की गई, इसलिए स्मार्ट रिकवरी आई. और ये एक ट्रेड काइंड ऑफ है वो है, लेकिन इससे ये नहीं कि दुनिया की चिंता दूर हो गई.
1: ये दैनिक, ये तो आज का था,
2: आज का था. अब हम बात करते हैं कि ये कारण क्या है, कारण क्या है. सबसे बड़ा कारण जो लेटेस्ट था कि जो मिडिल ईस्ट में जो उथल पुथल है और बदतर हो गई. पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कत थी, अब रेड सी में दिक्कत होने लगी. तब दोनों चैनल आपके ट्रेड बंद हो जाएगा, शिपिंग रूट्स बंद आएंगे, और जाहिर बात है उसका असर हमको तेल की मार्केट में मिला. क्रूड ऑयल जो 110 तक पहुंचा, फिर वापस रिकवरी हुई. तो ये उतनी उथल पुथल में मार्केट का इन्वेस्टर नर्वस हो जाता है. तो अब आपने कहा कि कारण क्या है, एक कारण तो मिडल ईस्ट है, दूसरा कारण आपने कहा बॉन्ड यील्ड का. अब बॉन्ड यील्ड जो है एक अपने आप में जेम्स बॉन्ड बन गया है. तो वो एक अपने आप में एक खतरा है. वो क्या दर्शाता है बॉन्ड यील्ड्स का, मतलब आम आदमी की भाषा में बोला जाए ये दर्शाता है बॉन्ड यील्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका में तो काफी ज्यादा तेजी है, ये दर्शाता है आम भाषा में कि इन्फ्लेशन का जो डर है लार्जली अराइजिंग आउट ऑफ द मिडल ईस्ट प्रॉब्लम एंड और बाकी चीजों से. इन्फ्लेशन का जो खतरा है बड़ा मंडरा रहा है पूरे वर्ल्ड पे, और उसके कारण मिडल ईस्ट भी है, उसका कारण पूरे जो संसार में खासतौर पे अमेरिका में जो उनका डेट है, उनका उधार है $40 trillion, वो अनसस्टेनेबल कोशिश की जा रही है. वहाँ के जो फाइनेंस मंत्री हैं, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से मैं इसकी फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग कर पाऊंगा, लेकिन री इंजीनियरिंग जो है वो एक बैंडेड होती है, उससे काम नहीं चलता.
1: जी, लेकिन क्या आने वाले समय में हम पूंजी बाजार में एक रीबैलेंसिंग देखेंगे?
2: रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, जो मैंने आपको समझाया, तो जो कैपिटल तो वहीं जाता है जहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, जब कमाई ज़्यादा होती है. तो इक्विटी मार्केट में रिस्क होता है, बॉन्ड यील्ड में आपको फिक्स इनकम मिलती है. आपको अगर अमेरिका में 5-5.5% मिल जाता है, 5% मिल जाता है, और देन अगर आपके एमर्जिंग इकोनॉमीज में थोड़ी दिक्कत होती है कि उसमें करेंसी डिप्रिसिएशन का या करेंसी फ्लक्चुएशन का फैक्टर इन करना पड़ता है, तो सेफ्टी की तरफ कैपिटल पूंजी घूम जाती है, और वो जो है उसका असर जो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट में इतना अच्छा नहीं पड़ता.
1: जी, और देखें रुपए का हाल. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 10 पैसे गिरकर 95.55 रुपए पर बंद हुआ. एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में आज लगभग 1.8% की गिरावट आई, जबकि जापान का निक्केई 1.9% से ज्यादा गिरा.
0: लेट्स मूव ऑन टू कमोडिटीज. ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल
1: से पहले मुझे लगता है क्रूड के संबंध में अभी और भी काफी कुछ खबरें हैं अनुभव जो प्रकाश जी से हमें चर्चा करनी चाहिए. कि अभी जैसा कह रहे थे हम, पूरी दुनिया के बाजारों पर असर डालने वाला एक सबसे बड़ा कारक यह है कि सप्लाईज, हमारे क्रूड की सप्लाई कैसे होगी, कहां से होगी, रास्ते बंद होते जा रहे हैं. और आईईए ने जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें यह भी है कि कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति में रोजाना 57 लाख बैरल की गिरावट आने की आशंका है. मतलब इससे फिर अब डेली जो सप्लाई है वो 10.7 करोड़ बैरल प्रतिदिन हो जाएगा वो डेली सप्लाई.
2: आईईए ने तो एक अपनी रिपोर्ट जारी किया, नंबर्स दिया है,

0: बट ये जो आशंका है ये कोई इसलिए कोई अंग्रेजी बोलते हैं नो ब्रेनर
1: जी,
0: तो नो ब्रेनर है जब
2: ऐसा है ही, दिखाई दे ही रहा है
0: तो वो हाँ। उन्होंने तो एक नंबर दे के आपको स्टैंप लगा दिया तो वो तो एक है गिवन है। तो अब उसमें इसके फिर सवाल ये है कि ये सिचुएशन ऐसी थी कि वार जो है जब जब 6 महीने से ज़्यादा हो गए वार को मिडल ईस्ट में, उधर से यूक्रेन रशिया को जो है उसमें भी ग्लोबल सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो रही है, तो ऐसी शंका जताई जा रही है और ऐसा डर है और ऐसा वो है कि भाई आर्मी ने सिचुएशन कि भाई जहाँ पे अंग्रेजी बोलते हैं फॉर एवर वॉर
1: जी,
0: जब ऐसी सिचुएशन में तो मुल्कों को अपने अपने देशों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से प्रिपेयर्डनेस की जाए, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनाए जाएं, क्लीन फ्यूल की तरफ हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ के लिए जाए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट।
2: इसके साथ साथ ये अनुमान भी है कि इस साल वैश्विक तेल की मांग में 25 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट भी आएगी, जो कि पहले के 16 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट के पूर्वानुमान से थोड़ी ज्यादा है। तो अब दोनों श्रिंक होने की बात हो रही है कि शायद मांग में भी गिरावट अब
0: उसका मुझे अंदेशा है क्योंकि डिमांड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई रिसेशन आ रहा है, उसका मुझे थोड़ा अंदेशा है।
1: And let's get back to the commodity prices. Like I was saying earlier, global crude oil prices fell today. Brent crude was trading 3.2% down at $104.15 per barrel in intraday trade at the time of writing this report. West Texas Intermediate crude was trading 3.2% down at $99.17 per barrel.
2: और भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.9% गिरकर 1,51,938 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 2% की गिरावट के साथ 2,28,920 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। आज अनुभव वक्त इतना ही है, खबरें तो और भी बहुत कुछ हैं लेकिन अब चलते हैं प्रकाश जी कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses leaders' session of BRICS Business Forum, says BRICS nations are emerging as key hubs for global innovation and solutions. Benchmark domestic indices decline, Sensex falls 121 points, Nifty settles below 23,400. And global oil supply and demand to further contract this year, says International Energy Agency. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
5: நேரம் 11:37 ஆகாஷ்வாணி. நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरेश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
2: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तमिल भाषा की शास्त्रीय और कालजयी ज्ञान कृति तिरुकुलर का रूसी अनुवाद सौंपे जाने की सराहना की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही,

बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोलिक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। उधर भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम आज सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வினய் சக்சேனா. अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोजा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
2: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। पुलिस ने लोगों को यथासंभव सार्वजनिक परिवहन, खासकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य में तेजी लाने और योजना क्रियान्वयन को गति देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना द्वितीय

0: शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोजा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों में यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा योजना पहले से निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। यूरोपीय आयोग ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இன்னும் சில நொடிகள் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனை தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन

0: जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्यों देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। कांगो के पूर्वी हिस्से में आरंभ हुआ जानलेवा संक्रामक रोग इबोला अब इस अफ्रीकी देश के 7 प्रांतों में फैल गया है। यह इस बीमारी का अब तक विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता प्रकोप है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। उधर भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम आज सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains yesterday. During their bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region.

0: இன்னும் சில நடைகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வினய் சக்சேனா. अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और

0: कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नागरिकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि उसने देश की एक प्रमुख तेल पाइपलाइन एहतियातन बंद कर दी है। यह पाइपलाइन ऐसे समय बंद की गई है जब यमन में हौसी विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के पास तटीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इससे इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के जरिए सऊदी अरब के तेल निर्यात पर खतरा उत्पन्न हो गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट में कल दुबई में भारतीय टीम फाइनल में पिछले चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains yesterday. During their bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcomed Russia's International Industrial Exhibition InnoProm India. President Putin invited Prime Minister to visit Russia for the 24th India-Russia Annual Summit. Prime Minister accepted the invitation. Mr. Modi gifted Mr. Putin a Russian translation of the Thirukkural, the ancient Tamil classic by poet-philosopher Thiruvalluvar, during their meeting. During his bilateral meeting with Iranian President

0: பொங்கும் மங்களம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை அல்லூர் ஏ கே ராகவன் அவர்களின் நகசுரை இசை கேட்டீர்கள். கேலமங்கலம் கே சி சந்திரசேகர் அவர்கள் தவில். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब

0: दो गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
0: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्र अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9 बजे से 30 मिनट से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इस पेंशन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता और सम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता देना है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य में तेजी लाने और योजना क्रियान्वयन को गति देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना द्वितीय चरण के तहत कुल 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में शहरी विकास विभाग सचिव सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 9वीं बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। वहीं महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल दुबई में भारतीय टीम का सामना पिछले चैंपियन श्रीलंका से होगा। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

அற்கோயில் இருக்கின்ற தாரா.

மூலம் ரமணா உங்கள் திரு